0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

ये जन्म सफल होएगा। एक दिन आना है और जब कबाड़ खोल देना मेरी ये तीसरी अख खोलो ये भी खुल जानी है, ये सहसरा चक्कर खोलो ये भी खुल जाना, ये सुषमनी नाड़ी खोलो ये भी खुल जानी है। ये भोले पाच बड़ी सोहनी कबीर साहब ने बात कही है अपनी बाणी च, वो कहिंदे ने रब नूं ढूंढिया नहीं लभ सकदे तुसी, ओदी कृपा हुंदी है वो मिलदा, वो किदां कहो कबीर भगत कर पाया भगती करनी पैंदी, भोले पाए मिले रघुराया भोले पा च रहना पैंदा, भोले भाव च चलाकियां चतराइयां नहीं, भोलिया पा महाराज जी तुही मैनूं मिलना, मैनूं तां रस्ता ही नहीं पता मैं कित्थे जावां, मैनूं तां टिकाणा ही नहीं पता मैं कित्थे जावां।

आवाज मारो मारा इन आ जाओ प्रभु, अही उड़ीक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी यादा आ रही ने, राती सोने हैं। तू ही वेखो सारे, आप बताओ मुझे, आप सब लोग इतना घूमते हो, इतना खाते पीते हो, सब जगह जाते हो, कभी कभी किसी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी शहर जाते हो, कभी घूमते हो, फिरते हो, जहाजों की सैर करते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो, शादियों ब्याहों में जाते हो, फिर भी आपका मन उदास है। पूछो क्यों मन उदास है आपका? मन तो खुश होना चाहिए था। क्यों उदास है मन? पति आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, फिर भी आपका मन उदास है। क्यों उदास मन? क्यों अंदरों रोने वाला मन है, रोने जैसा मन है? क्यों? ओ बिछड़िया होया, बहुत जन्म बिछड़े थे मन। नहीं हे प्रभु, बिछड़े हो तू,

दुख दूर करने वास्ते दाता तुम्हें मैंने अपने चरणों च बुला लिया, मुझे मिलने के लिए मेरी औकात क्या है मैं तुमसे मिल सकूं प्रभु, ये तेरी कृपा है वड़ियाई, कौन आनक सब तेरी वड़ियाई, मैनू कौन जानता है, ये तू ही मैनू बुलाया, संगत बख्शिश की थी। कहिंदे ने संगत विच रब मिलदा, जिहड़े बंदे दी रोज संगत होण लग पैंदी है उहनू बार बार संगत मिलदी है, वो इन्ना वडभागी जीव बन जांदा है, एक दिन वो परमात्मा नूं जाके मिल लैंदा है। इदां ही रब नूं सारी दुनिया मिली है, वड्डे वड्डे पैगंबर नबी अवतार पहलां उन्होंने लोकां ने संगतां कीतियां, फिर एक दिन परमात्मा दे विच विचर गए। पुछो तो सही, इतिहास तो खोल के वेखो, कोई होर तरीका ही नहीं परमात्मा नूं मिलन दा।

कोई नहीं बिरथा जा सकता, मालो माल करके भेजना मेरे महाराज ने। तुम जो घर जाना तुहाडे घर भर जाने ने रहमतां नाल, क्यों तुम मेरे गुरु की शरण में बैठे हो, मेरे गुरु ने तो दृष्टि पा के मालो माल कर देना है।

सुनन नाल चार पौड़ियां गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने सुनन ते लिखिया ने जपजी साहब जी दे। क्यों? एक पौड़ी कहती है सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनन नाल किनू सुनन नाल? उस पार ब्रह्म परमात्मा ने उरे बारे गल करन नाल। रब परमात्मा

हरि वाहेगुरु ए उस मालक दी गल करन नाल सुनिए सत संतोख ज्ञान संतोख आवेगा ज्ञान आवेगा सुख आवेगा सुनिए 68 का इशनान 68 तीर्थ दा फल मिलेगा सुनन नाल सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान जिहड़े लोग पढ़ नहीं सकदे अनपढ़ नहीं पढ़ सकदे उन्हां नूं पढ़न वाला मान मिलेगा नहीं ने पढ़ते कई बार वो भी मान मिलेगा सुनने नाल पढ़न तो भी चंगा है सुनना है सुनिए लागे सहज ध्यान ध्यान लगन लग पे अख बंद करोगे रब नाल जुड़ जाओगे सुनने नाल हुण सुन ही रहे हो तुसी ते जुड़े कि नहीं जुड़े ध्यान लगन लग पे क्योंकि रब दीआं गल्लां हो रही जिथे रब दीआं गल्लां होणा ते रब आ जांदा फिर अपने नाल जोड़ लैंदा सुनिए लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनन नाल दुख मुकदे ने पाप भी मुकदे ने किन्नू सुनना है उस पार ब्रह्म बारे जिथे ओदी गल हो रही होवे जिथे रब दी कथा हो रही होवे जिथे रब दी गलबात हो रही होवे उथे सुनना है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की मेरे हरी की कोई गलती करे

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वाले हैं जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसे दा क्यों बना मैं किसे कोलों क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे कोलों ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तू ही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इसे शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जिहड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जो गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानू पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये वेख लो फरमान है महाराज का हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्ना नू जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणां च बैठे हुए। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसी ना। जे लड़ाइया हैगियां भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हैं, महाराज के चरणी आ गए हैं। तो जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे, महाराज तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है, तो साढ़े भी प्यारे ने, है ना। कोई वैर विरोध नहीं रखना। मारे कहने वैरी मित्र सब कीते हैं, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वो भाई क्यों तरक्की कर गया, वो बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ा याद रखने वाली ने, जो रब नाल जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंद। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है? वो दस रहे ने महाराज जी,

ये सिमरन ही काम आना है। ये जो हुण तुसीं सिमरन कर रहे हो ना सारे कट्ठे होके, जो तुहाडे औखी घड़ी आनी है, कोई मुसीबत आनी है, कोई दुख माड़े समा आना, माड़ा दिन आने ने, यह सिमरन काम आना। उदों तुहानूं इन्हें जान बचाउणी है सिमरन ने। सत

जा हर बख्शंदा, जदों हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के की कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा मेरा विछड़िया गुरु मला दे, है? मैं रब तेनू

भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाह दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जां महाराज कहंदे मिल गुरु गोबिंदा, मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदो सुख मिलता है, उदो आनंद मिलता, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जो गुरु मिल जाता है आनंद।

सबे काज सवारी है। हुण इस पंक्ति ते महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जो तेनू पा गया, मैं तेरा बन जा तेनू मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुही महाराज दे क्यों नहीं तुसी लड़न लगदे, कहो महाराज जी अहीं की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किहे दी फिक्र।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट।

0: ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। जनाब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिल में दबा कर मत रखिएगा, फटाफट एक छोटा सा कॉल कर मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, शहर के हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर बारंबार हम आपको बताते रहते हैं। चलिए एक बार पुनः बता देता हूं, 01204060205 अर्थात हिंदी में 120 40 60 205 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ये तो रही संपर्क सूत्र की बात, यानी कि इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या है खास इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अगर आपके पास कुछ हुनर है उस हुनर को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे दोस्त हैं अच्छे टीचर हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा बेहतर होगा। ऐसी खास एक टैलेंट मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, चलिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन बारम्बार मैं आपसे यही बातें शेयर कर रहा होता हूँ, साझा कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी कला है, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, वो चाहे आप सिंगिंग की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात क्यों ना हो, तो ऐसी हमारे रेडियो को सुनकर, हमारी ख्याति को सुनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है सुमित कुमार। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और GNM का कोर्स कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, अच्छा गाते, अच्छे इंसान है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते, तो बात करते हैं सुमित की। तो सुमित, फाइनली सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
1: सर आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नया एक्सपीरियंस है सर।
0: सेम मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि ये आपके साथ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है।
1: जी।
0: तो सुमित सबसे पहले आप मुझे बताएं कि शारदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, ये तो रही बात रेडियो एफएम की, चूंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी में आना कैसे हुआ, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में बताइए जिसका मैं नाम देख रहा हूँ GNM कोर्स आप कर रहे हैं, सो प्लीज बताइए।
1: सर सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ, ये तो सर एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को आने का अलग ही क्रेज रहता है। और मेरा जो कोर्स है GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मैं यहाँ से नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि मेरी फैकल्टी मैम ने कोई सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए।
0: ओह ग्रेट।
1: तो
0: उनका नाम बताइए।
1: सर मेरी मैम वो माधवी शर्मा मैम है।
0: ओह ग्रेट।
1: यस सर, वो हमें MSN पढ़ाती हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ शारदा में। सर शारदा एक मतलब बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है, एक प्लेटफॉर्म खुद देता है कि बच्चे आगे निकले यहाँ से जाने के लिए।
0: तो आपको कैसा लग रहा है उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया, आपको यहाँ एक मौका मिल गया, हम और आप बात कर पा रहे हैं?
1: सर एक ग्रेट फीलिंग है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है।
0: ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ा कहते ना कि एक सुखद लम्हा है, इस लम्हे को हम कैद करना चाहते हैं।
1: जी।
0: और जो आपकी बातें वो अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक हम बातें पहुंचाएंगे जरूर। सुमित यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि आप सिंगिंग करते हैं, आपके बारे में उस टैलेंट के बारे में जानेंगे जरूर, कोई अगर ब्रेक पर जाना चाहे आपके अंदाज में, तो कोई कैसे ब्रेक पर जाएगा?
1: सर ऐसा ब्रेक के लिए, मैं ब्रेक के लिए बना ही नहीं हूँ सर।
0: अच्छा, ब्रेक के लिए बना ही नहीं है, मतलब लगातार काम करना चाहते हैं,
1: अभी रुकना ही नहीं चाहते, अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं किया।
0: चलिए खैर मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं जो कि म्यूजिकल ब्रेक है। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ यहीं जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे साथ हैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक टैलेंट है जो कि बहुत अच्छे सिंगर है सुमित कुमार, उभरते हुए कलाकार है, राइजिंग स्टार इनको हम कह सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। खास बात यह कि आज एक शारदा यूनिवर्सिटी का टैलेंट हमारे बीच में है और यही हमारा उद्देश्य है कि शारदा यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ दिखाना चाहते हैं जमाने को, तो जरूर यहां आ पाइए और आपकी बात हम आपके श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुमित, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके टीचर के बारे में जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट किया कि सुमित आप अच्छा गाते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक रेडियो एफएम है, वहां जाकर आप मिलिए। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके जो टैलेंट है उसको हम हमारे लिसनर्स तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा कुछ और बताइए अपने बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटेल में मुझे बताइए कि ये जो शौक है, इसके शौक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किसने आपको गाइड किया?
1: जी सर, तो सर जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th क्लास की बातें हैं, तो एक रफ्तार है हमारे जो रैपर हैं, उनका रियल नेम है दिलेन नायर, तो सर मैं उनको सुनता था, तो वहीं से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट

0: पे अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, 32K प्लस व्यूज जा चुके हैं सर।
1: नाइस।
0: सर उस गाने पे।
1: जब आप गाना लिखते हैं तो किस सोच के साथ आप गाने को लिखते हैं और फिर आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं कि भाई या सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि मेरा गाना सही लिखा गया है या किसको इसको और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ?
0: सर मेरे गाने बेसिकली जो अभी तक मैंने किए हैं और मैं कर रहा हूँ ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। जैसे बैक बेंचर में मैंने स्कूल लाइफ बताई है, एक दूसरा सॉन्ग मेरा आया था झूठा इश्क, वो मैंने उसमें लव लाइफ बताई थी अपनी कि लव लाइफ कैसे होती है क्या। अब जैसे सर एक है मेरा, उसके बाद मैंने जो निकाला है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेरे सॉन्ग का नाम है, तो सर उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है कि मिडिल क्लास इंसान की कैसे
1: कहानी होती है, उसका
0: जी जी कैसा स्ट्रगल है, तो वो एक है मेरा। तो मतलब मेरे जो थोड़े रैप है वो कहानी पे बेस्ड है, बाकी अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हिप हॉप टाइप भी मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है तो वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ अपनी उसको टैलेंट को। तो आगे भी सर ऐसा है कि अभी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रेडी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है।
0: जी जी,
1: मंजिल बहुत दूर है, बहुत करीब जरूर आएगी जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ पर सुमित एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हमारे लेसन को, एक छोटा सा ब्रेक और उस पर एक गाना आपके लिए, सो कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुम शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते मुस्कुराते इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं आचीज हरदिल अजीज, गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जिसको आप जमाने के बीच लेकर जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 अर्थात हिंदी में। ये मैंने आपको बता दिया 120 40 60 205, एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी का एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे बीच है, सुमित कुमार है, जो कि एक अच्छे रैपर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसके टैलेंट को इनकी फैमिली ने पहचाना, खुद इन्होंने पहचाना, इनकी टीचर ने पहचाना और इनके दोस्तों ने भी इनके टैलेंट को पहचाना। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ये यूं कहें कि शारदा एफएम में ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, और मुझे लगा कि जब ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना हम उनको ये दिखाएं कि रेडियो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो सुमित, दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: सर, दोस्तों के बारे में सर ऐसा है कि मेरे कुछ लिमिटेड ही दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती नहीं रखता हूं। और सर जो जितने भी हैं वो सर इतने अच्छे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके, मेरे मतलब वो ना सिर्फ इसमें म्यूजिकल में, मेरे को एज अ फ्रेंड वो अपने करियर में भी, जैसे मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ तो वो उस फील्ड में भी मेरे को हेल्प करते हैं। तो वो ऑल ओवर वो जो मेरे फ्रेंड हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को हर टाइम टू टाइम, पढ़ाई में भी लेके और गाने में भी लेके। और
0: वेरी गुड, लाइफ क्या नाम है दोनों दोस्तों के?
1: सर एक मोलश्री है सर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पे साथ में अभी आई है हमारे,
0: जी जी जी,
1: और सर एक प्रथम है।
0: प्रथम है,
1: हाँ जी।
0: चलिए, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूंगा कि ये याराना आपका बना रहे, दोस्ती आपकी बनी रहे। तो सुमित, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, यानी कि उसी मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके इस टैलेंट के बारे में जाना कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप मानते हैं। अब बात आती है फैमिली की, फैमिली का यहाँ मैंने जिक्र किया, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया?
1: सर सपोर्ट सबसे पहले जो मेरे को फैमिली ने किया वो मेरी सिस्टर थी और ब्रदर थे।
0: क्योंकि आपसे बड़े हैं छोटे?
1: हाँ सर, वो सबसे बड़े हैं, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है और उसके बाद मेरे ब्रदर, उसके बाद मैं।
0: तो वो क्या करते हैं दोनों?
1: सर मेरी जो सिस्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहीं से उन्होंने मेरे को यहाँ पे नर्सिंग में डाल दिया।
0: ग्रेट, नाइस।
1: तो उसके बाद सर मेरे जो ब्रदर हैं वो बैंक में मैनेजर हैं।
0: हाँ, उन्होंने बैंक में नहीं डाला?
1: नहीं, उन्होंने बैंक में नहीं डाला।
0: ओके, तो उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छा करो, लिखो, आगे बढ़ो।
1: यस सर।
0: अच्छा, मम्मी पापा की अगर मैं बात जानूं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा?
1: सर स्टार्टिंग में तो मम्मी को मतलब इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, तब मम्मी को जब मैंने दिखाया अपना गाना डाला तो मम्मी को खूब पसंद आया, तो मम्मी ने सपोर्ट किया। तो थोड़ा पापा है पीछे, मतलब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली वो करते हैं।
0: हाँ, होते भाई। तो, पापा चाहते हैं कि कुछ बन जाओ,
1: बन जाए
0: और अच्छी तरीके से अपने करियर को स्थापित कर लो, खूब रुपया पैसा कमाओ।
1: जी सर।
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में रुपया पैसा नहीं है, खूब इज्जत है, खूब सम्मान है जब आप स्थापित हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो सुमित, यहाँ पर मैं एक ब्रेक जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिम जाते हैं, आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तो ये शौक इसको और उसको कैसे बराबर मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं?
1: सर जैसे ये करियर ऐसा है, फील्ड ऐसी है कि इसमें सर पर्सनालिटी भी काम आती है एज अ मॉडल, जैसे हमें शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए तो सर मैं जिम काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हैं
0: तब से जिम कर रहे हैं।
1: जी जी, जिम कर रहा हूँ मैं, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी की मैंने इस चीज को लेकर फील्ड के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा, नाइस। अच्छा, खान पान का बड़ा मैटर रखा जाता है, योग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है,
1: डिसिप्लिन डाइट।
0: हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लोग तो अब बहुत आलसी हो गए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, नींद वो पूरी ले रहे होते हैं, मतलब आलसी भी हो गए, तो नींद लेना बहुत जरूरी है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं?
1: सर आज की डेट में तो सर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एज अ मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, हमें हॉस्पिटल में जो ड्यूटी लगती है तो लोग को बहुत देखने को मिलता है, जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं उन्हें, तो एब्डोमेन इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है। तो आज की डेट में सर डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सर मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है क्योंकि सर क्लिनिकल्स में ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसके बाद सर असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद सर जिम, और उसके बाद सर डाइट, और एक सर हॉस्टल का खाना, सर सबको पता है हॉस्टल लाइफ।
0: तो आप यहाँ रह रहे हैं?
1: जी हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं। तो हॉस्टल में सर थोड़ी डाइट,
0: मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये अक्सर बात मुझे सुनने को समझने को मिलती है, हॉस्टल का खाना देखो यार इतना बुरा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हर एक सिस्टम है, जैसे सपोज करिए कि हॉस्टल के जो देख रेख के केयर टेकर जिन्हें आप कहें, वार्डन जिनको आप कहें, वार्डन के ऊपर भी एक कमेटी होती है, उनके ऊपर एक कमेटी होती है, और कहा जाता है कि अन्न के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार अलग है भैया,
1: घर वाला स्वाद नहीं है,
0: वो सीन अलग हो सकता है। तो लेकिन दोस्त सुमित का कहना यही है कि अच्छा खाइए, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत में चार चांद लगते चले जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जंक फूड जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फूड, जो कि बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी आपकी सेहत को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, यहीं कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जेएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, और इनके गाने के बारे में जरूर हम जानेंगे। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे कदमों से आप निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने जुड़ा हुआ है। सुमित कुमार हैं जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआत रही, घर में एक नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और वाकई शारदा विश्वविद्यालय में आकर कहते ना कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। जब आप एक यहाँ आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, तो सुमित हम अपनी टैगलाइन बनाकर रेडियो पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप यहीं कर होके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सुमित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक प्रोफेशनल नेम है या प्रोफेशनल कोई एक यूट्यूब है जिस पर आपकी वीडियोस होती हैं, लोग आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें?
1: जी सर, मैं बताता हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल नेम है लेविन सुमित है। लेविन सर जो इंद्रजी के वेपन है, इंद्रजी का जो वेपन है उसको कहा जाता है लेविन, जिसका हिंदी में नाम है वज्र। हिंदी में वज्र कहते हैं,
0: वज्र।
1: हाँ, इसका मीनिंग थंडर स्टॉर्म, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली निकलती है उनके में।
0: अच्छा,
1: तो लेविन का मतलब यही है।
0: ओके,
1: तो ये नाम मैंने ऐसा रखा कि लेविन सुमित मैंने इसलिए रखा कि कुछ रैपर है कि वो अपना नाम, जो रियल नेम होता है, हाइड करके वो कुछ दूसरा नाम रखते हैं कि उनसे लोग पहचाने। जो लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्यार से रखा हुआ है, उसके साथ मैं आइडेंटिटी के साथ वो अपनी दूसरे नाम जो प्रोफेशनल नेम है आगे लेके जाना चाहता हूँ।
0: मैंने भी सोचा, मैं भी जब एक्टर बन जाऊंगा तो मैं भी अपने नाम के साथ चलूंगा।
1: जी, सर, आप
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मैं भी इसी बात पर यकीन करता हूं कि मेरा नाम गगन गौतम है। फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है और सेकंड नेम भी मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गौतम ऋषि के नाम पर हम गौतम है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अपनी एक पहचान को बरकरार रखना, उसके साथ आगे चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुमित, अगर फाइनली मैं आपसे कोई एक बहुत ही खूबसूरत गाना या यूं कहें कि रैप सुनना चाहूं, तो कौन सा आप हमारे लिसनर्स को रैप सुनाना चाहेंगे?
1: सर, मैं चार लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: नहीं, तुम आठ सुनाओ बाबा, टाइम तुम्हारा है, बोलो।
1: ओके सर
0: जी।
1: सर, मैं अभी जो मैंने नया रिसेंटली सॉन्ग निकाला है, बम भोले, तो भोले बाबा पे मैंने कुछ सॉन्ग बनाया, तो वो उसकी लाइनें बताना चाहूंगा।
0: प्लीज।
1: भोले का रंग चढ़ा भंग, रगड़ भंग पिया मस्त जिया, भोले का फैन हूँ मैं, शिव का कैर हूँ मैं, विशिला जैर हूँ मैं, छोटा पत्थर तू पूरा कैलाश हूँ मैं, भोले तलाश में आ घूमू मैं तो तेरी चारों धाम में, मिलाना तेरे जैसा कोई मुझे सारे संसार में, दुश्मन का पे भोले सारे तेरे नाम से, काम बने मेरे सारे तेरे नाम से, बम बोले बोले तो बम बोले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक आपने ताना बाना बुना है। तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी है, बनी रहे, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो फील्ड में आ रहे हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैपर बनना चाहते हैं, क्या संदेश होगा?
1: सर, सबसे पहली बात है कि खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ये चीज करने की, क्योंकि सर कुछ सोसाइटी है कि वो इस चीज में थोड़ा, सर जब स्टार्टिंग होती है, हम जैसे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो सर सोसाइटी थोड़ा बहुत रोक टोक करती है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा। तो सर खुद से ना, सर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज में। तो सर किसी की ना सुन के अपने दिल की करे, अपने मन की करे, जो टैलेंट है सर उसको आगे लेके जाए और कोशिश करते रहे सर, एक दिन अपने सपने पूरे जरूर होते हैं।
0: बेशक बेशक, जरूर सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों के सामने सच बात तो ये भी कि दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, यानी कि ईश्वर, खुदा, माँ बाप की ब्लेसिंग्स काम आती चली जाती है। और निश्चित तौर पर फिर वो एक दिन आपका आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने सपने को साकार कर लेते हैं। तो सुमित, मुझसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
1: सर, मेरे को बात करके सर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सर, ये आपसे एक मैं चीज सीखा हूँ यहाँ पे आके, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करूँ मैं सर।
0: थैंक यू। नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बातें होंगी तो जरूर मैं फिर आपके साथ साझा करूंगा। सो लिसनर्स, ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का इशारा जब होता है तो मुझे लेनी होती है अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चाहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हंसते खेलते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी का लुत्फ उठाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आए हाय क्या

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:25 हो चुके हैं, 16 तारीख है और क्या खास उसके बारे में जान लेते हैं। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम की अपडेट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप खुले मैदान में चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, दिक्कत है, परेशानी आपके सामने हो तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन अपडेट यानी कि IMD मौसम विभाग ये कह रहा है कि देश में मॉनसून का हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसकी जो रफ्तार है पीछे के मुकाबले में थोड़ा धीमी है और दक्षिण पश्चिमी मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा है, ऐसा एक्सपर्ट कह भी रहे हैं। और अगले 4 से 5 दिनों में कई जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके हिस्सों तक पहुंच सकता है। और इस बीच देश के कई इलाकों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि 15 जून को मॉनसून ने आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं वहाँ और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, यानी कि मौसम वहाँ पर बदला है। और इसके बावजूद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कई हिस्सों में अभी भी मॉनसून का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले 5 दिनों के दौरान सुनने में ये आ रहा है कि मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक के जो शेष भाग हैं वो तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां, वो जो माहौल है वो अनुकूल है। दिल्ली NCR क्या कह रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में

दिन के समय में अगर हम देखें तो गर्मी और उमस बनी ही रहती है, और हालांकि शाम के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी बारिश वगैरह वगैरह। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लुत्फ उठाएगा मौसम का, लेकिन जन धन हानि ना हो, गरज चमक के साथ जो बिजली कड़कती है उससे अपने आप को दूर रखेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है, आ जाओ आ जाओ, आई लवली ट्रैक।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:32 हो चुके हैं, 16 तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। सेंसस के बारे में बात कर रहे थे, सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना 2027 के पहले चरण के आंकड़ों के अनुसार, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के आंकड़े कुछ हमारे सामने आए। दिल्ली में 2011 के मुकाबले में आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों की संख्या में 65% वृद्धि हुई है, यानी कि पहला चरण 2.30 करोड़ आंकी गई है आबादी और 61% जो फैमिली है, जो परिवार है वो बढ़े हैं। और अपडेट ये भी सामने आने कि बाहरी दिल्ली के इलाकों में सबसे तेज विस्तार दर्ज किया गया है। तो ये आंकड़े आपको सही देने होंगे। अगर आपके दरवाजे पर ऑफिसर्स कर्मचारी अगर आ रहे हैं तो जो जानकारी आपसे मांग रहे हैं, साझा कर रहे हैं, अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि सटीक सही जानकारी दें ताकि वो देश हित में हो। वर्ष 2047 का हमारा एक लक्ष्य है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। 33 सवालों के जरिए घरों की संख्या, उनमें रहने वाले परिवारों के जो सुविधाएं, वो उस तरीके से आंकड़े जुटाए गए हैं। हमने लोगों को देखा कि लोगों ने आवभगत भी की, उनके बारे में भी जाना, गर्मी के मौसम में उनको पानी सर्व किया, लेकिन कहीं कहीं इतर विपरीत हमने ये भी देखा कि लोगों के दरवाजे बंद मिले या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी पास की गई। सो प्लीज इस सरकारी काम में हमें, हम सबको सहयोग करने की बहुत ज़रूरत है। और वर्ष 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उस यज्ञ में आहुति तभी दी जाएगी जब हम सही मार्ग पर चलकर आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
4: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
5: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और आपकी लाइफ के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत। अर्थात ईश्वर पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना है कि हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी जो काया है वो निरोगी काया बनकर रहे, हमें रोग मुक्त रहें, ईश्वर हमें ऐसा आशीष दे। इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा खान पान रखें। 21 जून का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो सच बात तो यह कि योग दिवस आ रहा है तो योग के बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए योग करेंगे तो यकीन मानिए कि आप हमेशा निरोग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और आप इसके इतर विपरीत ये भी सोचिए कि आपने रुपया बहुत ज्यादा कमा लिया है लेकिन आपने सेहत को नहीं कमाया, सेहत को आपने गंवा दिया। वही रुपया जो आपने कमाया है अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए रुपया आप खर्च करते हैं, तो थोड़ा समय अगर आप अपनी हेल्थ के लिए निकालेंगे तो यकीन मानिए कि आप हेल्दी रहेंगे और आपके चेहरे का जो ग्लो है वो देखते ही बनेगा। कितनी अच्छी बात की जी, कम समय में हम बात करने वाले थे नोएडा एयरपोर्ट के बारे में और गगन ने बहुत अच्छी हेल्थ की बात की। इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम। फालतू बातों को छोड़ो और अच्छी अच्छी बातों को अपनाओ, इसलिए फालतू का गाना सुनते हैं। फालतू फालतू फालतू।
1: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमने एक गाना सुना था कि बेबी को बेस पसंद है, बेस पसंद है, बेस पसंद है। लेकिन एक आज हेडिंग को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो गाना याद आ गया। हेडिंग आज तक ने उसको दिया है कि माफियाओं का खात्मा ही मुझे पसंद है, और ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। ये उनका पसंदीदा विषय है। कल यहाँ से यानी कि जेवर एयरपोर्ट से किसान जब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से जब मुलाकात की तो लोगों ने अपने मन की बातें शेयर की कि पहले क्या होता था और आज क्या होता। वो वीडियो हमने भी देखा। तो कहने का मतलब यही है कि हर कोई चाहता है कि कानून व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे, और जब आवाम खुश होती है तो निश्चित तौर पर दिल से दुआएँ निकलती हैं, और जब दुआएँ निकलती हैं तो आप देखें कि चारों ओर विकास होता है और जेवर एयरपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, उड़ानें शुरू हो रही हैं। कल एक उड़ान शुरू हुई, यानी कि जब वेलकम किया गया फ्लाइट का, कॉमर्शियल व्हीकल का, तो उसके बाद पैसेंजर्स के लिए भी बहुत जल्द उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। और ख़बर ये आ रही है कि बहुत जल्द आपको यानी कि 1 जुलाई से लेके देश के 16 शहरों के लिए फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएगा। लख लख बधाइयां, बल्ले बल्ले। दूसरी बात, नोएडा एयरपोर्ट पर कुछ ही सेकंड में आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बहुत सारी डिटेल्स हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक और खबर ये भी आ रही है कि किसानों की बल्ले बल्ले, यानी कि जिन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अपनी जमीन दी है उनको टोल टैक्स में छूट मिलेगी, इस बात के लिए भी लख लख बधाइयां। काश बेटा हमें भी अपना एक प्लॉट ले लेना था, क्या करें। नहीं, तुम बस अपने काम का प्लॉट बनाओ, ये भी सही है। मेरी माँ कहती थी कि तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो घास खोजोगे, तो फिर आज मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, जेवर के आसपास के सारे ठेके मेरे पास आए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंसान जो भी काम करे लगन के साथ करे। हाँ अम्मी जान कहती है, हाँ अम्मी जान कहती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुरक्षा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। इसी संदर्भ में आज हमारी सहयोगी, या यूं कहें कि स्मार्ट की सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ रही हैं और विषय है संचारी रोग। इस विषय पर डॉक्टर साहब से वो क्या बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा स्मार्ट के सहयोग से, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुजाता जी।
2: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
3: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
2: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
3: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
2: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
3: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
2: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
3: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
3: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोए, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
2: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
3: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
2: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
3: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
2: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
3: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
2: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
3: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरिन की टेबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
2: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
3: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
2: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
3: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
2: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
3: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
2: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
3: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
2: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
3: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
2: बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेनू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: अभी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर एक खास जानकारी डॉक्टर विकास के जरिए, और इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही थी हमारी सहयोगी सुजाता। विषय था संचारी रोग यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी, अर्थात परजीवी रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या कीड़ों के माध्यम से फैलता है। तो प्लीज सावधानी बरतें, लापरवाही न बरतें, डॉक्टर की सलाह के साथ आगे बढ़ेंगे तो रोग मुक्त आप रहेंगे। तभी तो कहते हैं सेहत सही तो लाभ गई। ऐसी विशेष जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: हाय
4: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
2: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
3: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सबकी साफ सफाई करते हैं।
4: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
2: बहुत बढ़िया,

0: जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हम कहते हैं कि सेहत सही तो लाभ कई। राम राम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। इसी संदर्भ में सुजाता जो कि हमारी सहयोगी हैं, उन्होंने बात की है डॉक्टर अजय गुप्ता से, जो सब्जेक्ट है इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, ये क्यों जरूरी है इस पर विस्तार से बातें हुई। आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCH UP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
2: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
2: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
2: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर, देखिए, सारा सारा खून आता है, उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
2: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने

0: प्रोग्राम चलाया था सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है। ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं। और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं, अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट NGO का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय गुप्ता को। सब्जेक्ट था इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है, और टीका सही समय पर अगर आप अपने बच्चों को लगवाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और मृत्यु दर को भी आप ना कह सकते हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: मेहरबानो पीछे से विश्वामित्र, एकदम से आगे ठहरो सत्यवादी हरिश्चंद्र, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आखिर आ लिया।

पूरा धर्म निभाया हरिश्चंद्र ने। मेहरबानों, ये धार्मिक प्रोग्राम आप चंदा केसित के सौजन्य से सुन रहे हैं, जिसमें नए नए किस्से आने वाले समय में आप सुनेंगे हमारी आवाजों में।

प्रेमी सजनों, अगर गरीबी न देखी हो तो आज देख लो, और इन गरीबों की बदनसीबी न देखी हो तो आज देख लो। मेहरबानों बेहाल हो जाते हैं।

नौता पुत्र तीनों यहां उर्मिला दाखिल थी। अस्पताल में पहुंच गए मेहरबानों, उर्मिला के हाल को देख

0: जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना पिलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से गुड बाय।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ए अनीता, अनीता हो?
1: हाँ माँ।
0: तनी चाय बनाई तू हो? तार बाऊजी के चाय पिए के मन करता। तनी चाय कड़क बनाई है, उसमें तनी अदरक डाल दी है, चाय पत्ती तनी ज्यादा कर दी है, आ ऊपरा न जारे में नमकीन धैल बाटे, तनी नमकीनो में से ले ले आई है। आई सामान काल के आयल बाई या पोरल बाटे, जहाँ देखो वही जब फेंक ले रहा तारो सामान। तन को इतनी के दिमाग नहीं कि तनी अस्थिर जगह धोती। आई तो दिन रात मोबाइल चलाओ था, का देखा तड़ी इतना मोबाइल में थे? लाओ थे मोबाइल दे हम कपड़ा उपड़ा देखी।
2: उस ना माँ।
0: ए बेटा, हम मोबाइल में तो उनके कपड़वा देखे लो सो। ले आओ तेरे देखे के बाबू मुखे वाला बनाओ। ले आओ हम को दिखाओ।
2: ए मजा आई तू ही देख, हम जाता नहीं कहीं।
0: हम ए में हमरा ढोंग आई। अच्छा ठीक बा जा। ए अनीता, चावा बन गए हो?
1: ना माँ, रख ले बानी।
0: अच्छा चावा रख के तनी ने वो बड़ा जरूरी काम बा। तनी है हमरा ढोंगे नहीं खिया मोबाइल में काज नहीं केंगा कपड़ा देखे लो सो। हाँ दुकेगा खरीदल जाला कपड़वा, मोबाइल में से ना खरीदे ला लो कपड़वा, दुकेगा आ जाला घरे। तनी ऊ है हमरा के देखेबू तनी मोबाइल में।
1: अच्छा आर्डर वाला कहत?
0: हाँ हाँ ऊ है ऊ है।
1: लाई हम फोन दिखा दे तनी।
0: हाँ लाइट केंगा का हो लगे।
1: हाय देखी एक ऊपर कर जाए ना तो लौक जाए दूसर दूसर।
0: अच्छा हाँ।
1: आई
0: दादा, है कौन कपड़ा हो?
1: पक्का माँ, इकुल छोड़ दी, इकुल आजकल के फैशन है।
0: अच्छा हम अपने बाबू खतरा कपड़ा खोज तनी ना, बाबू है ना हुई हो।
1: आई आई आई दिखाओ तनी हो। हाय देखी कितना सुंदर बाटे फराक है। हाय देखी आई छोट लइकनी पहनी ली सब।
0: लइकनी वाला मत दिखाओ, बाबू हुई ना लइकन के कपड़ा दिखाओ। हाई कुल कपड़ा फराक उराक थोड़ी बबिया ना चाहिए, बाबू आई।
1: हाँ माली लाइकन वाला लगा दे तनी, अब देखी हम जा तनी चाव बना दे।
0: ठीक बा जा।
3: अब ये क्या रख दिया तुमने? टेबल पे पहले से इतना सब कुछ रखा हुआ है।
1: ये गाजर का हलवा है।
3: अच्छा, और ये तुमने बनाया है?
1: हाँ मैंने ही बनाया है, क्यों क्या हुआ?
3: नहीं वो तुम्हें देखने जब पहली बार आया था तो तुमने कुछ ऐसा ही लाल लाल का कटोरी में था और तुम्हारे घर से बोला गया था कि ये गाजर का हलवा ही है, पर शायद वो गाजर का हलवा कम और गाजर का नमकीन ज्यादा लग रहा था।
1: अरे आप भी ना, वो मेरी ही गलती की वजह से हुआ था। चीनी की जगह मैंने नमक डाल दिया था हलवे में।
3: आज तो ऐसी गलती नहीं हुई ना?
1: अरे नहीं बाबा, सब लोग खा चुके हैं, मम्मी और पापा।
3: अच्छा और तुमने खाया कि नहीं खाया अभी तक?
1: मैं अभी खा लूंगी आपके खाने के बाद।
3: अरे रे, ये तो कितनी संस्कारी बहू निकली। तुम वही हो जो मतलब शादी के पहले मुझसे पहले खा लिया करती थी। तुम कितनी बदल गई हो। आओ बैठो साथ में, वहाँ से वो बॉल पास करना। ये थोड़ा सा ले लो। और बताओ आज दिन भर तुमने क्या क्या किया?
1: कुछ नहीं, घर का सारा काम किया। दिन में टाइम मिला था तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। शाम को मम्मी कह रही थी वॉक पे चलने के लिए तो साथ में गई थी। वहाँ मोड़ तक गई थी, फिर वहाँ से हम लोग वापस आए।
3: यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है ना तुम्हें मतलब अगर टाइम बचता है तुम्हारे पास तो कुछ कोर्स वगैरह करना चाहिए। वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ही जमाना है, सारे लोग ऑनलाइन ही सारा काम कर रहे हैं। तुम ना वो देखो नीचे वाले कवर में एक लैपटॉप रखा होगा, बहुत अच्छे खासे कंडीशन में भी है, तुम्हें कुछ ट्राई करना चाहिए।
1: हाँ एक दिन सफाई कर रही थी तो मैंने देखा था, काफी अच्छा है। लैपटॉप से याद आया कि मम्मी दिन में मोबाइल से कपड़े देख रही थी।
3: किसके लिए, तुम्हारे लिए कि अपने लिए?
1: अरे नहीं, ना हमारे लिए देख रही थी ना अपने लिए देख रही थी। वो कपड़े तो देख रही थी ये बोल के कि बच्चे के लिए कपड़े देख रही है।
3: ये तो अच्छी बात है, कम से कम माँ को फिक्र तो है कि अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ कुछ खरीद लें।
1: अब वो तो है, पर मैंने और आपने सोचा था कि गुड़िया आएगी हमारे घर, लेकिन मम्मी की बातों से लग रहा है कि मुझे तो लड़का ही चाहिए और मुझे बहुत डर लग रहा है।
3: ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ मूठ का ही कुछ ज्यादा सोच रही हो, होता है मम्मी समझ जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा सुनो, मेरा तो खाना हो गया, बहुत अच्छा बनाया था तुमने, ऐसे कभी कभी बनाते रहा करो। अच्छा मुझे आ रही है बहुत जोरों की नींद, कल मुझे जल्दी जाना भी है, तुम भी ये सब रख के आ जाओ।
1: हाँ बस बर्तन साफ करने करके मैं आती हूँ।
3: अरे छोड़ दो, सुबह साफ कर लेना, आ जाओ।
1: अरे बस दो मिनट ही लगेंगे, निपटा के आती हूँ।
3: जैसा तुम्हें ठीक लगे आ जाना।
0: अरे बहू इतना सवेरे उठ गई लू, अभी तरह आराम करे चाहिए। बानी ना हम कॉलेज सारा काम, जा तू आराम कर। तुम्हारा आराम के तरह सबसे ज्यादा जरूरत बा, आज रात के दूध पड़ल बा हो हमें केसर डालने रही काहे न को पियले के
1: आमा भुला गयी
0: इतना लापरवाही कर बो और सारा फल सरत होने दूध पड़ल बा रात के का कर तरू ध्यान दे तनी दहिया पर तबे न हमारा मुन्ना जो नई तो तनी स्वस्थ पैदा हुई है दही पर बिल्कुल ध्यान नहीं कुदे थे रात के दूध हो पड़ल बाटे
1: अब पी ले तनी अम्मा
0: नहीं अब बस या दूध नहीं पियबू तू रुक ताजा दूध आयल बाटे है गरम करके दे तनी तरह के बताओ दही पर बिल्कुल ध्यान नहीं कुदेता फैला दूध पीला और जो अनार धैल बा तनी अनार छील के खा लो अमन कहाँ बैठे अमन वक्त भेजू तनी तनी जाए हमारा बाजार है तनी दिन लगे आ गई बैठे है सामान खरीदे भेज अमन वक्त भेजे तब
1: छतो पे गई नहीं अम्मा दूर से बुलाई अब बेचरिया है
0: ए अमर तनी चलबा हमके बाजारे लेके कुछ सामान खरीदे बा न देखो तारा डेट नजदीक आ गए कोनो सामान हम नहीं खिले आये बाबू खतरा खूब देर खिलौना लेके आग बटे कपड़ा लेके आग बटे चलो लेके हमरा के जल्दी
2: गेम खेलो तनी इतना धूप बा धूप पे खाए तो दौड़ाओ दौड़ो हमके
0: खाली दिन भर मोबाइल चलाओ थोड़ी देर एगो काम तोरा से नहीं खेल
1: अम्मा बहुत दर्द होता हमारे पेट में अम्मा
0: दर्द होता का हो गल तरह हो बैठा बैठा आराम से बैठ ए अमन
2: हाँ?
0: अमन जल्दी गाड़ी निकाल बाबू जल्दी निकाल भाभी के दर्द होता
2: हम गाड़ी ऐसी तो बहुत लेट हो जाए हम एम्बुलेंस के फोन पर पता नहीं ट्रैफिक बहुत है
0: जल्दी करो कुछ करो जल्दी करो डॉक्टर साहब आ गई नी हमारे बहुरिया कैसन बाड़ी अब बाबू कैसन बने हमारे बाबू एल बने जिन
4: बधाई हो माँ जी आपके घर लक्ष्मी आई है आपकी बहू भी ठीक है
0: लक्ष्मी आई है ये अमन का कहता मैंने बेटी भेज दिया
2: अगे मैं बेटी भेजोगे चाहे बेटा इतना बढ़िया खुशी का माहौल बा एक बच्चे का मिल तला
0: नहीं गाड़ी निकालो हम घर जाए हमारा नहीं मिले थे अब
2: ई का कहता रू अमा तुम मिलगा चाहे मत पीला हम जाते हैं देखे और देखो भैया आ गई ने अरे भैया भैया अपने यहाँ लक्ष्मी आई बड़ी
0: ठीक बा आ गई ना तो ठीक है बटे अब तानी के भौजी के लेके आईहा जा हम जाते नहीं घर घरों तो ढेर काम बटे
2: अम्मा भाभी आ गई
0: तो आ गई तो का करी मुड़ी पर लेके नाची उनके दुनिया भर के काम पर घर ऊ के करी बड़े बनी हम करे खतरा सारा भाभी आ गई
1: देख रहे हैं अम्मा कैसे बोल रही है हॉस्पिटल में ना हमसे मिली है ना बहनी से मिली है ऐसे ही चली आई
5: तुम मायूस ना हो तुम जाओ हम अम्मा से बात करते हैं अम्मा अम्मा का है रखे से एलबड़ बताओ तो अस्पताल से भी चले अलू है इतनी बेरा हमने क्या एल बनी के तब वो तुम आईलू है बबिया के तू चेहरे वो देखे ना आईलू है काहे खिस्से एलबड़ इतना लड़का भल चाहे लड़की भल अपने ना घरवा के नाम रोशन करिए सन आजकल के जमाने में लड़का लड़की में के भेदभाव रखा था आ? तो ही बताओ
0: ऐसा कोनो बात नहीं है हमके लड़के चाहिए घर के वंश बेटा बढ़ावे ने हम ना सोच ले रही हमारा लक्ष्मी लक्ष्मी ना चाहिए घर में
1: अरे अम्मा काहे खिसियाई बन आई देखी ना कितना सुंदर बहनी दिया एकदम यहाँ पे कर दिया
0: तू तो हट जा कर मुही अपना बेटी के जल्दी ले जा हमरा लग हमरा एकर मुंह नहीं के देखे के आना तहरा से कोनो मतलब बटे जल्दी हट जा हमरा सामने से
5: ऐसा है अभी चलते हैं फिर वक्त के साथ साथ अम्मा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा अम्मा अभी ले रिसेल बड़ू
0: खीस कहियो ना जाए जले हमके वो पोता नहीं देबा ना कहिया ले हमारी खीस ही ना रही
5: अम्मा जितना महीना हो गया तू अब वही पे अटकल बड़ू पोता हो जाए का फर्क बा लैका लेखनी में हमरा के तनिखे बुझात कोनो फर्क बा ई कुल सोचल छोड़ द अम्मा हंसी खुशी से हमनी के साथे रहल जा बाबू हम तो जाता नहीं आशीर्वाद लेवे आयल बनी रहू अनिता और बबिया के ख्याल रखिया गोड़ा तने अम्मा
0: जी जा तू निम्ने निम्ने पहुंच के जब फोन कर दिया हमरा
1: अरे अमर बहनी का रोतन
0: दूध पी
1: ले
0: थे जब बहिनी के खिलाओ तड़ी अपने इतना काम पड़ल भाई कमो के करी बर्तन इतना पड़ल बटे है झाड़ू लगा बस सारा काम पड़ल भाई मेहरारू दिन हर लड़का के फेर में बिया।
1: अरे अम्मा काहे खिसिया तनी अब भी कर दे तनी बोल पकोल बहनियों छोटी बियाह के देख रेख जरूरी बटे
0: इतना दुलार के तार बहनी नहीं खी देख रेख जरूरी बटे लड़का रही तो कमा के घर में पैसा ले आई ई तो पैसा लेके जाइये जैसे और कुछ ना।
1: अरे अम्मा ऐसा काहे कहतनी आजकल की लड़की भी बहुत नाम रोशन करते आजकल केहू कपारे पे बोझ नहीं के लड़का हो चाहे लड़की
0: अभी जब खड़े खड़े हमरा से जबान चलाओ तड़े।
1: अरे नहीं अम्मा हम जबान थोड़ी ना लड़ा
0: तईका होला एक का कहल जाला
1: हम तो बस बताओ
0: कौन सी बताओ रनिया वही बेरा से सारा काम पड़ल लड़का लेके बैठल बड़ी तोर बाप इतना दहेजो तो नहीं खन दे ले तो बैठ के खाइबे।
1: देखी अम्मा झगड़ा रहुआ हमरा बीच में झगड़ा के बीच में हमरा माई बाबूजी के न ले आए
0: काहे न ले आई तोरा माई बाप के अपना बेटी के उठाओ और जल्दी जो अपना बाप घरे वही जा रही थे।
1: नहीं अम्मा ऐसा न करी
0: काहे ना करी ना ते हमरा घरे ना रहबे ते जो अपना बेटी के उठा चल जो जैसे जो
1: ना अम्मा ऐसा न करी
0: नहीं नहीं अपना बेटी के उठा जल्दी हमरा घर
1: से
0: जल्दी निकल जो हमरा घर से निकल
1: हम कहा जाए हमको मत निकाल
0: निकल जो
1: ना
0: निकलना निकल
1: हमें डाटा वाक
0: हम दूसरे बिया
1: मत
0: करी
1: ऐसा
0: घर से भाग
1: ना ऐसा मत करी ना
0: निकल जो जल्दी जैसे निकल निकल।

हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी को बोझ मानते हैं और इसलिए जिनकी सिर्फ बेटियां ही होती हैं, उनके साथ अक्सर उनके पति या उनकी सास द्वारा हिंसा किया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में अनीता के साथ। अनीता की सास को एक बेटा चाहिए था, लेकिन अनीता को बेटी हुई और इस बात से अनीता की सास को बहुत दिक्कत हुई। उसने अनीता के साथ दिन प्रतिदिन दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और अनीता के पति के चले जाने के बाद उसने अनीता को शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाई और अंत में उसने अनीता को उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद अनीता ने पुलिस का सहारा लिया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुलिस के द्वारा अनीता को ये जानकारी दी गई कि उसके साथ जो भी हुआ है वो घरेलू हिंसा है और इसे सहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस ने अनीता को ये बात समझाई कि अगर आप हिंसा सह रही हैं तो इसका मतलब आप अपने समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। बेटा और बेटी में भेदभाव करना या सिर्फ बेटी होने पर महिला को प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। पुलिस ने अनीता को इस बात की जानकारी दी कि हिंसा के अलग अलग रूप हैं, महिलाओं के साथ अलग अलग तरह से हिंसा के केस भी देखे जाते हैं। अनीता ने तो अपने साथ हुए घरेलू हिंसा पर पुलिस की मदद से रोक लगाया, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक कानून बनाया गया है और इसके अंतर्गत आप शिकायत दर्ज कराकर अपने साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगा सकती हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी महिला के निवास के अधिकार और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अदालत से सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसके अलावा भी

0: ऐसे तरीके हैं जैसे महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करके अपने साथ हो रहे हिंसा को रोक सकती हैं, और महिला हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090 या 112 पर कॉल करके आप अपनी समस्या को सुलझा सकती हैं। तो हमारी आज की ये प्रस्तुति आप सभी को कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM, सुनो शारदा।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं, चंदन चला गया।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जन का रेडियो मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

दोस्तों, आप सभी ने हिंसा का नाम तो सुना ही होगा। वैसे तो हिंसा कई प्रकार के होते हैं और समय समय पे हमने आपको हर हिंसा के बारे में जानकारी भी दी है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन सब से थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे दहेज के ऊपर। तो ज्यादा कुछ पहले ही ना बताते हुए हम आपको एक कहानी सुनवाते हैं। एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसका नाम दिव्या था। वो अपनी ग्रेजुएशन पास के ही कॉलेज से करती थी। तभी उसकी मुलाकात उस कॉलेज में पढ़ रहे एक लड़के से होती है जिसका नाम वरुण होता है। वैसे वरुण दिखने में बहुत स्मार्ट और पिता का आज्ञाकारी बेटा है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। जैसे तैसे करके उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, लेकिन अब वरुण अपने शहर में जॉब करने लगता है और दिव्या की भी अच्छी खासी जॉब लग जाती है।

0: कैसे हो वरुण?
1: अच्छा हूँ।
0: और घर पे सब लोग ठीक हैं?
1: हाँ, घर पे सब लोग अच्छे हैं। तुम कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: घर पे सब लोग कैसे हैं?
0: घर पे भी सब लोग बढ़िया हैं। तुम बताओ, जॉब कैसी चल रही तुम्हारी?
1: अच्छी चल रही है।
2: वैसे फोन पर तो तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, सामने से तो आवाज ही नहीं निकल रही। सब ठीक तो है ना?
1: अरे ऐसी बात नहीं है, काम का थोड़ा प्रेशर है।
2: हाँ हाँ, काम तो होता ही रहेगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोगों को बातें करते हुए काफी दिन हो गए हैं। मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं हम दोनों के बारे में पापा से बात करने की सोच रही थी, तुम क्या कहते हो?

0: वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मेरे परिवार वालों को है, लेकिन पापा ने मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और मुझे इस लायक बनाया है, और उनकी उम्मीदें मेरी शादी से बहुत है।
1: तो तुम मुझसे दहेज की बात कर रहे हो क्या?
0: दहेज तो नहीं कह सकते हैं, मगर मेरे पापा यह चाहते हैं कि उन्होंने जितना मुझ पर लगाया वो उन्हें वापस मिल जाए।
1: इसे ही तो दहेज कहते हैं।
0: अब तुम इसे जो भी नाम दो।
1: अगर मेरे पापा तुम्हारे पापा को दहेज ना दे, इसका मतलब तुम मुझसे शादी ही नहीं करोगे।
0: मुझे नहीं पता, मैं अपने घर वालों के खिलाफ तो नहीं जा सकता।
1: देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं पापा से बात करूँगी।
0: ठीक है, जैसा हो वैसे बताना मुझे।

0: पापा कैसे हैं आप? आपने दवाई ली अपनी?
1: हाँ बेटा, दवा तो मैंने ले लिया है। बताओ कैसी हो तुम?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है?
0: हाँ पापा जी, जॉब बहुत अच्छा चल रहा है।
1: वैसे कुछ काम था मुझसे?
0: हाँ।

0: बोलो ना बेटा, क्या हुआ?
1: मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: एक्चुअली पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ।
0: अरे वाह, अब तक छुपा के रखा तुमने मुझसे। वैसे कब से चल रहा है ये?
1: कॉलेज के दिनों से पापा।
0: और अभी तक तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखा?
1: नहीं पापा, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि सही वक्त आने पर मैं आपसे बता दूंगी। उसकी भी जॉब लग गई है और मैं भी अब जॉब कर रही हूँ।
0: बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बताओ, सिर्फ पसंद करती हो कि शादी वादी का भी प्लान है?
1: हाँ पापा, उसी के लिए मैं बात करने आई थी।
0: वैसा नाम क्या है लड़के का?
1: वरुण पापा।
0: वरुण, अच्छा नाम है। तो फिर मीटिंग फिक्स कराइए उनके पापा से हमारी।
1: जी पापा, पर पापा उनकी कुछ शर्तें हैं।
0: शर्तें? कैसी शर्तें?
1: वरुण के पापा चाहते हैं कि उन्होंने अब तक पढ़ाई में जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो उन्हें मिल जाए। साथ ही उनकी फैमिली में दहेज लेने की प्रथा है।
0: बेटा तुम ये क्या, कौन से चक्कर में पड़ गई तुम? तुम्हें पता होना चाहिए कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही जुर्म है। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि नहीं पता है?
1: जी पापा पता तो है, लेकिन वरुण का कहना है कि अगर उन्हें वो पैसे नहीं मिले वो मुझसे शादी नहीं करेगा। और मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ पापा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा।
0: बेटा देखो, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद से मैंने पूरी कोशिश की है कि माँ और बाप दोनों का प्यार मैं तुम्हें दे सकूँ। तुम्हारे प्यार में कभी कमी ना आ सके, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। और तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे ही कर दूंगा? मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जिस घर में भी जाओ बहुत धूमधाम से जाओ, महारानी बन के जाओ। अगर वरुण के पिता इतना सब कुछ ना कहते हैं तो भी मैंने अभी तक जो भी कुछ कमाया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए कमाया है। मैं वो सारा उन्हें देता, पर मुझे ये सामने से मांगने वाली बात अच्छी नहीं लगी बेटा। लेकिन तुम्हारी अगर खुशी है इसमें, अगर तुम चाहती हो वहीं पे शादी करना, तो मैं तुम्हारी खुशी के बीच में पत्थर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करते आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जिस घर में जाओ वहाँ भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे मैं करता हूँ। अगर इतना सब कुछ करने के बाद वो तुम्हें अच्छे से मानते हैं, तुम्हें स्वीकार करते हैं, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके पिता से बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी उनसे बात कराओ।
1: थैंक यू पापा।

0: राघवेंद्र जी नमस्कार, मैं दिव्या का पापा।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए।
2: अच्छा अच्छा, दिव्या के पापा हैं आप?
0: जी जी,
2: आइए आइए बैठिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बिटिया ने बताया कि वो आपके बेटे से प्यार करती हैं। एक्चुअली दोनों करते हैं एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
2: हाँ हाँ, इस बारे में पता है मुझे, वरुण बता रहा था।
0: जी, तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे। अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो फिर शादी का डेट निकालते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
1: शादी तो हो जाएगा, लेकिन हम आगे कुछ सकते हैं।
0: जी, मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगा है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वही एक्चुअली मैं वही डिस्कस करने भी आया था कि लगे हाथ ये भी बात हो जाए। तो बताइए क्या करना रहेगा।
2: देखिए भाई साहब, वरुण हमारा एक ही बेटा है, इसके अलावा दो लड़कियां भी हैं हमारी। अब बड़ी वाली लड़की का शादी किए हैं हम, बहुत अच्छा घर में, बहुत मतलब धन उन दे के हम उसका शादी किए हैं। 50 लाख तो कैश दिए हैं, एगो गाड़ी दिए हैं, मतलब सोना का गहना तो पूछिए मत। सबको हम एक एक सोना का अंगूठी दिए हैं वहाँ, और लड़के को चैन अंगूठी और दुनिया का सामान ऐसा ऐसा दिए हैं जिसका तो नमो नहीं जानते हैं हम। अब बताइए कि अब हम दिए हैं तो थोड़ा मतलब इस चीज में हिसाब पक्का रहे तो दिक्कत नहीं होता है आगे। अब बताइए, इतना कुछ हम दिए हैं तो हमको भी तो उम्मीद है कि हमको कुछ मिलेगा। अब मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, उसकी पढ़ाई में तो पता नहीं कितना पैसा फूंक दिए हैं हम। हम चाहते हैं कि जितना पैसा उसके में लगाए हैं वो भी तो हमें वापस मिले।
0: जी बात तो मतलब ठीक ही है, आप लोग खैर इतने हैसियत में हमसे बड़े हैं। देखिए बहन जी, दिव्या की माता है नहीं, तो बचपन से मैंने कोशिश किया है कि दिव्या को किसी भी चीज की कमी ना पड़े। मैंने उसके मांगने से पहले वो चीज उसके हाथ में ला के रख दिया है, और आज बहुत सालों बाद उसने एक चीज मांगी है, वो है उसकी खुशी। और वो खुशी आपके बेटे में है, और मैं उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर आप जैसे बता रही हैं कि आपने 50 लाख कैश दिया है और वरुण के पढ़ाई में भी आपने इतना पैसा लगाया है, तो इतना सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा।
2: देखिए भाई साहब, अब वो सब बात तो ठीक है, लेकिन हमको जो बताना था हम बता दिए हैं। हमारी भी तो एक छोटी बिटिया अभी पड़ी है, उसके लिए भी तो धन उन चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं होगा उसका शादी। देखिए, जितना कहना था जितना बताना था वो तो हम कह दिए। आपको ठीक लगे तो आप ब्याह करिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी बहुत रिश्ता आ रहा है हमारे बिटवा के लिए। वो तो वरुण आपकी बिटिया से प्यार करता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कम कर दिए हैं अमाउंट। बाकी आप समझ लीजिए क्या करना है आपको।
0: ठीक है, कुछ दिन का समय दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ।
2: अच्छा ठीक है, जल्दी करिएगा थोड़ा, वरना हमारे पास रिश्ता तो रोज ही आ रहा है।

0: दिव्या, दिव्या।
1: हाँ पापा।
0: पानी लाओ बेटा।
1: अभी लाई। ये लीजिए पापा पानी। और बात हुई आपकी?
0: हाँ बेटा बात तो हुई। वो लोग तो बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं और बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए उतना पैसे अरेंज कर पाना। कहाँ से लाऊंगा मैं उतना पैसा?
1: पापा,
0: चिंता ना करो बेटी, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। क्या करूं अब मैं? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी बेटी को मैं निराश भी नहीं कर सकता और उसे धूमधाम से भी भेजना है कि जहां जाए वो खुश रहे। FD भी तुड़वा ली मैंने, सब मिला जुला के भी 35 लाख हो रहा है। इतने में कैसे हो पाएगा? घर गिरवी रख दूं क्या मैं? हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी दिव्या के जाने के बाद से मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेले इतने बड़े घर में कैसे रह पाऊंगा। ये सही है, मैं घर गिरवी रख दूंगा।

0: अभी तक आपने सुना कि कैसे ही दिव्या के पिता ने दिव्या के ससुराल जाके उनकी शर्तें मानी और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। दिव्या को मन ही मन में ये गुमान था कि आखिर उसने शादी कर ही लिया है अपने पसंद के लड़के से। वैसे दिव्या बहुत खुश थी कि उसकी शादी वहाँ हुई जहाँ वो चाहती थी, और दिव्या को ये उम्मीद थी कि उसे वहाँ पे बेटी बना के रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके पिता ने बचपन से उसे दिया था। पर उसके ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। किसी को कितनी भी भूख क्यों ना हो, लेकिन बहू तभी खाएगी जब घर के सारे मर्द खा लेंगे। यहाँ तक कि उसे पुरुषों के सामने बैठने की इजाजत भी नहीं थी। दिव्या ने इस बात पे ऐतराज दिखाया, पर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। और वरुण ने तो ये कह के मुंह फेर लिया कि यह उसके घर की परंपरा है। धीरे धीरे दिव्या को और तरीके से और परंपरा का नाम देके बहुत सताया गया। दिव्या को अपने पिता की बहुत याद आने लगी। दिव्या को ये लगने लगा कि किसी के शर्त में बंध के शादी करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वरुण उसको सच में प्यार करता तो वो कभी भी दिव्या की आंखों में आंसू नहीं देखता। वो उसके लिए अपने घर वालों को समझाता कि उसके साथ ऐसे व्यवहार ना किया जाए। लेकिन वरुण चुप रहा और मुंह फेरता चला गया। हमारे घर में यही परंपरा है, ऐसा कुछ कह के वो बातों को टाल दिया करता था। आए दिन दिव्या को किसी न किसी बात पे ताना मारा जाता, उसे पीटा जाता, उसे प्रताड़ित किया जाता, उसे और धन लाने के लिए उकसाया जाता। जब दिव्या को लगा कि अब बात उसके जान पे बन आने वाली है, दिव्या ने मौका देखा और घर से भाग गई, और भाग के अपने पापा के पास चली आई और अपने ऊपर हुए हिंसा के बारे में दिव्या ने अपने पापा को पूरी बात विस्तार से बताई।
1: क्योंकि दिव्या के पापा एक पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्होंने पुलिस की मदद से अपने बेटी के साथ हो रहे घरेलू हिंसा पर रोक लगाई। लेकिन बात यहाँ पे आगे रुकती है कि अगर आपके पास किसी का सहारा नहीं है तो आप अपने साथ हो रहे हिंसा को कैसे रोकेंगी। अगर आपके साथ या आपके आसपास पड़ोस में किसी भी महिला या लड़की के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकती हैं और आपको तुरंत उसका समाधान भी मिलेगा। इसके अलावा अपने क्षेत्र के वन स्टॉप सेंटर या फिर महिला थाना या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से बात करके अपने साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगा सकती हैं। और आप सभी महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने वाले पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के मामले से संबंधित है के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया है, जिसमें दहेज को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। तो अब अगर दहेज की वजह से आपके साथ हिंसा हो रही है तो आप उसे रोक सकती हैं। अगर आप में से किसी के साथ हिंसा हो रही है तो सबसे पहले इस बात की जानकारी आप अपने किसी करीबी को दें, या अगर हो सके तो आपके साथ हुई हिंसा का कोई सबूत हो तो उसे भी पुलिस के साथ जरूर साझा करें। चूंकि दिव्या के साथ मानसिक शारीरिक और मौखिक तौर पर हिंसा हुई थी, तो उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत की और उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान की गई। अगर आपके साथ भी इस तरह की हिंसा हो रही है तो आप घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत कर हिंसा से निजात पा सकती हैं। इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने वाले पर कोई दंड या जुर्माना तो नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का अगर वो व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दंडित जरूर किया जाएगा। हमारे समाज में हर रोज महिलाओं के साथ अलग अलग तरह के हिंसा के केस देखे जाते हैं। वैसे तो हिंसा के कई सारे रूप हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो सिर्फ प्रताड़ना नहीं, वो हिंसा है। दिव्या ने तो अपने साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ अपने पापा के साथ मिलकर आवाज उठाई और उसे रोका भी, लेकिन अब बारी आपकी है।
2: सशक्त बनिए, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए और इसे रोकिए, क्योंकि सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनिशाला में।
2: प्यारे बच्चों, आदाब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर चमनारा खां, NCERT नई दिल्ली से। बच्चों, आज हम आपको आपकी उर्दू की दर्सी किताब अपनी जबान से आठवीं जमात के लिए एक सबक पढ़ेंगे, ना हुई खरोली। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये सबक का नाम क्या है, ना हुई खरोली। लेकिन ये पंडित रतनासर शार का नॉवेल है, फसाना आजाद उससे माकूज है। उसी में से हमने उसका एक ऐसा हिस्सा जिसमें बहुत ही दिलचस्प अंदाज में एक किरदार को दिखाया गया है जिसका नाम है खुजी। तो थोड़ा सा पहले रतनाथ सरशार के बारे में आपको बता दूं कि रतनाथ सरशार 1847-1840 दोनों ही कहे जाते हैं, 21 जनवरी 1903 को हैदराबाद में पैदा हुए और एक नॉवेल निगार भी थे, कॉलम निगार भी थे, एडिटर भी थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, बाद में लखनऊ में मुकीम हो गए। उन्होंने कॉलेज की भी तालीम हासिल की, उसके बाद स्कूल में टीचर मुकर्रर हुए, अवध अखबार में 1878 में एडिटर मुकर्रर हुए। उनका सबसे मशहूर काम जो है फसाना आज़ाद है, जैसे मैंने बताया आपको कि ना हुई खरोली जो है ये उनकी जो नॉवेल है, मशहूर नॉवेल फसाना आज़ाद की एक हिस्सा जो है हमने इसको लिया है, जिसमें खुजी नाम का करेक्टर है जो अब हिमाकतों से भरा हुआ है और वो अपने आप को जो है बहुत डींगे मारने का, बहुत शेखी बगाड़ने का उसको शौक है। तो अब इसमें जो हमने किस्सा जो लिया है फसाना आज़ाद से वो हम पढ़ते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही दिलचस्प है। तो ना हुई खरोली। मियां खुजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे, यहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल ऊब चुके थे। सराय में क़याम था, तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खुजी दिन भर थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने कि सराय के खटमलों का बसेरा, पिछले पैर से ही खटमलों ने मियाँ खुजी को भंभोड़ना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा, उस पर खटमलों की योरिश। मियाँ खुजी झल्ला उठे, आंख खुल गई, चिराग रोशन किया, देखा तो हजारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खुजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने, अरे लाना मेरी खरोली, लाना मेरी खरोली, अभी इन खटमल कैदियों को मौत के घाट उतारता हूँ, इतनी खरोलियां भूकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाए। उन्होंने क्या समझा है, अरे लाना मेरी खरोली, कहाँ गई मेरी खरोली। मियाँ खुजी ने हाँक लगाई और यूं धाड़ धाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया, हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हुल्लड़ मच गया, हर भोंग का ये आलम था कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई हाथ लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर, लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खुजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए जागते रहना चोर चोर की आवाजें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। हाय हाय खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी खरोली, ए चोर गेदी ठहरे रहना, मैं अभी खरोली लेकर आता हूँ। अब मियाँ खुजी को ये कौन बताए कि ये शगुफा खुद उन्हीं का छोड़ा हुआ है। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता। बात का बतंगर तो खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियां खुजी की रगे बहादुरी फड़क उठी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा ना ताओ, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना लेना लेना, जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए ठोकर खाई, अड़ा अड़ा धम औंधे जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुमार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए, जिस्म से खून रिसने लगा। कुमार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है, तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। ये सुनकर खुजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर ना हुई खरोली, वरना मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बैद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, और मियां खुजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं, ना हुई करोली वरना। कुमार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है, तो समझा यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खुजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाजो की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लाद घूसे रसीद की कि मियां के इंजर पिंजर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटा टोप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियां खुजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था, मियां खुजी चोर बन गए और बेबाहों की सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर सन्नाटे के हाथ लगाए। जब लोग मार मार कर थक गए, तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खुजी है जो 5-7 रोज से सराय में डेरा जमाए है। फौरन चराग जलाया गया, लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खुजी है। सब ने एक जबान होकर कुमार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खुजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियां खुजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुमार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमियत फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, अरे कुमार गे दी, हटता है या मारूं करोली। यार लोगों ने जब खुजी की हालत गैर देखी, तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया, और मियां खुजी जरा सी देर में गर्द झाड़ कर उठ खड़े हुए। इधर आजाद को खबर मिली कि खुजी चोरी करते पकड़े गए हैं, किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आजाद को बताया कि कुमार की हंडिया चुराने गए थे, जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी, गरज के जितने मुंह इतनी बातें। आजाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था कि भला उनका यार खुजी ऐसा करे, वो चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फकरेबाजी जानता है, शेखी भगाड़ता है, दून की लेता है, भला चोरी चकारी भी करता तो कुमार की हंडी होगी। आजाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे, लकड़ी हाथ में ली, और जो बोलेगा उसको मजा चखा दूंगा, और खुजी की मिजाज फुर्सी को चला। अभी आजाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही देख कर उनके कान में आवाज आई, हाथ तेरे गेदी की, बड़ा आजाद बना फिरता है, ऐसे आजाद बहुत देखे हैं, मर्दूत चारपाई पर पड़ा खरखर किया और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आजाद मुस्कुराए, अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खुजी झूमता झामता चला आ रहा है और बड़बड़ाता जाता है, ना हुई खरोली वरना इस वक्त कुमार की लाश फड़कती होती। खुजी लड़खड़ाता झूमता झामता आजाद की कोठरी तक चला आया, आंखों का अंधा नाम ने इंसुख, इतना भी ना हुआ कि आजाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आजाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। हाथ पांव, खुजी बोला, ये लोहे की सलाखें हैं, 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50, वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए, चुटकियों में घेरा तोड़कर लोगों को बखेर कर रख दिया, ना हुई करोली इस वक्त कसम अमीर अलैह सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। आजाद मिजा दां थे, मुस्कुरा कर कहा, वो कैसे? खुजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्ला मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था, बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी इस कंधे, मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से जमीन पर गिरा, किसी को कूले पर लात के मारा, खट से छपर कट की पट्टी पर, 2-4 तो मेरे रौब में आकर ही गिर पड़े, 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी, जो मेरे सामने आया उसे नीचे दिखाया, मार मार के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, और वो कुमार गेदी तो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। आजाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना, दुरुस्त फरमाया, आपकी जाते शरीफ से यही तवक्कु थी, मर्दा चिनी कनन यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाजिरी देना है, ये रस्म दुनिया है, उनसे रुख्सत भी हो लेंगे। खुजी ये सुनकर झूम उठे और कहा, वल्ला आजाद, तुम भी आलम में इंतकाब हो, लेकिन ये तुर्की का सफर, वो भी बहरी रास्ते से, जरा खतरनाक है। खैर, कुछ देर आराम कर लो, शब बखैर, शब बखैर। अब इसमें देखिए बच्चों, आपने ये ना हुई खरोली, आपने सबक को सुना और आपको मजा भी आया होगा। खरोली कहते हैं शिकारी का चाकू जो होता है, वो एक खास तरह का चाकू है जो मुड़ा हुआ होता है, उसको खरोली कहा जाता है। तो ये जो करैक्टर है, ये जो किरदार है खुजी नाम का, तो ये फसाना आजाद जो नॉवेल है पंडित रतननाथ सरसार का, उसका एक किरदार है जो हिमाकतों से भरा हुआ है। और ऐसे लोग जो है वो आप अपने आसपास आज भी देखते होंगे जो कि इस तरह की हिमाकतें करते रहते हैं। फसाना आजाद नॉवेल है, इसके कई किरदार हैं। आजाद और खुजी सबसे ज्यादा मशहूर है। खुजी अपनी हिमाकतों और डींगों की वजह से न सिर्फ इस किताब की जान है, बल्कि उर्दू अदब की चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक है। इस सबक में खुजी की हिमाकतों की तस्वीर कशी की गई है, कि बल्कि ये दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद भी किस तरह लड़ते हैं और अकड़ते हैं, या बताने की कोशिश करते हैं कि वो पिटे नहीं है, बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया है। तो सरसार ने, जो पंडित रतननाथ सरसार है, उन्होंने मबालगा आमेज मिजाह में खुजी को एक नया दिलचस्प किरदार बना के पेश किया है, और ऐसे किरदार आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज अब इसमें एक कहावत है, आंखों का अंधा नाम ननसुख, कहते हैं उन्होंने जरा भी ये नहीं, उसने उसको ये भी नहीं सूझा कि अंदर जो है वो आजाद खड़े हुए हैं, और उनसे टकराया भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको बुरा भला कहता रहता है। तो फौजा आजाद ने कहा, खैर हम तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ हाथ पैर तो नहीं टूटे तुम्हारे, मजाक में उनसे कहते हैं। तो वो कहते हैं, मेरे हाथ पाओ अगर ना हुई मेरी करोली, करोली ये नहीं शिकारी चाकू जो एक तरफ मुड़ा हुआ होता है, बच्चों बार बार आपको करोली को बता रही हूँ, तो उनका क्या कलाम था। बहुत से लोग कहते हैं ना हुई करोली, बहुत से लोग कहते हैं कहना, बहुत से के बोलने में ये होता है ना, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, मतलब ये, मतलब ये, तो इस तरह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है, तो ऐसे ही उसका तकिया कलाम था, जब भी वो ना हुई खरोली वो यही बोलता था। तो इस तरह से कहते हैं कि मैंने तो वो हाथ दिखाए, 50 आदमी मुझे घेरे हुए थे, किसी को कंधे पे, किसी को इधर जो है, 10 आदमी इधर मारे, 10 आदमी इधर मारे, तो इस तरह से मैं तो, और अभी जो है ना वो मुझे कुम्हार हाथ नहीं आया, नहीं तो मैं उसको ऐसा मारता कि उसकी लाश पड़क रही होती आज यहाँ पर। आजाद ने बहुत गौर से देखा, सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, आपकी ज़ाते शरीफ से यही तवक्को थी। उन्होंने ये जुमला कहा क्योंकि लखनऊ से थे, तो लखनवी अंदाज में उन्होंने कहा कि यानी मर्दां चुनी कुनंद, ये उन्होंने फारसी में लिखा है, जिसका मतलब है यानी बहादुर ऐसे ही करते हैं, मर्दा का मतलब बहादुर। अच्छा आप कुछ देर आराम कीजिए, कहते हैं सुबह सवेरे हमको चलना है, आप आराम कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुर्की का सफ़र वो भी बहरी सफ़र है, और ठीक है चलो, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि पहले तो सफ़र ऐसे ही किया करते थे। तो कहते हैं चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं, शब बख़ैर, शब बख़ैर का मतलब गुड नाइट, शब बख़ैर यानी आपकी रात जो है वो बख़ैर गुजरे, ऐसे तो शब बख़ैर कहा जाता है, और सुबह को कहा जाता है सुबह बख़ैर, इस तरह से। तो ये देखा आपने कितना मज़ेदार सबक था और आप लोगों ने पढ़ा, और ना हुई खरोली ये सबक का नाम रखा गया था, क्योंकि उसमें से नॉवल में से एक हिस्सा लिया गया था इस तरह का, कि जो कि मिजाह पर मबनी था, यानी जो हंसाए, थोड़े हंसने वाले भी चीज़ें पीसेस जो है वो डालने चाहिए, तो इस तरह से। अब इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जो कि आए थे इसके अंदर, अजीब के मायने अनोखी, यूरिश कहते हैं ना खटमलों की, यूरिश हमला, खटमलों का हमला, चढ़ाई, बसेरा सराय ठहरने की जगह, गलबा, गलबा का मतलब होता है छा जाना, फिर हड़बोंग उदमबाजी फितना पर्दाजी, हवाली मवाली कहते हैं खुशामदी, साथ में रहने वाले उनको कहा जाता, खातिर तवाज़ो खिलाना पिलाना, यहाँ पर बतौर तंज जो है ना पिटाई मुराद है, कहते हैं राजा कि खातिर करें खूब अच्छी तरह से, आज तुम्हारी खातिर करते हैं इस तरह से, बतौर तंज पिटाई मुराद है यहाँ पर। ऐसे ही हमियत यानी गैरत, सदमा दुख, और खरोली मैंने बताई दिया आपको, शिकारी का चाकू, एक खास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है। हमने इस किताब में सबक के अंदर खुजी की तस्वीर भी बनवाई है, खटमल का और उसका सराय का मंजर जो है वैसी, और करोली की भी, तो आप जब इसको किताब में देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको और ज़्यादा मज़ा देंगी। इसी तरह से मियां खुजी किसके साथ और कहां आए हुए थे? सराय में आए हुए थे। ये आपको सोचना और बताना है। तो सोचना क्या है, मियां खुजी किसके साथ, कहां, आजाद के साथ आए हुए थे, कहां आए हुए थे, सराय में आए हुए थे। खुजी जहां ठहरे हुए थे वहां क्या हादसा पेश आया? तो उनके साथ हादसा ये पेश आया कि उनको लोगों ने चोर समझकर खूब मारा पीटा। सराय में कोहराम क्यों मच गया? कोहराम जो है वो इसी वजह से मचा, जब लोग जो है, जब उन्होंने चोर चोर का सुना और तब तरफ भागे तो वो समझे कि चोर आ गया है, तो इस वजह से सराय में कोहराम मच गया। मियां खुजी के साथ लोगों ने क्या सुलूक किया तो बताइए आपको। खूब मारा सबने, खूब खातिर तवाजु की, खातिर तवाजु जैसे मैंने बताया कि उनकी खूब पिटाई वगैरह करी। खुजी का दोस्त कौन था? आजाद था उनका दोस्त। खुजी आजाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे? वो कहते हैं मैं तो रगे अहमियत फड़क फुटी और मैंने तो ये करा। वो कहते हैं अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अब आपकी सब बात मानते हैं, आप ऐसे कीजिए हमें सुबह को जो है बहरी सफर पे जाना है, आप जल्दी से अपनी तैयारी कीजिए, अब थोड़ा सो लीजिए ताकि हम सुबह में निकले। अब नीचे कुछ लफ्ज दिए हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। फायदेमंद, बेजारी, सदमा, करोली, बसेरा, आप इसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसमें से ही जुमला लें, कोई और जुमला भी अपने तरीके से अपने तौर पर उसको तख्लीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी तख्लीकियत जो है वो नजर आएगी। यानी कोई जुमला जो है वो आपने बनाया कि करोली, तो करोली ये नहीं आपके खुजी ये कर रहा था कि लाना करोली, तो आप ये कह सकते हो कि पहले जमाने में लोग जो शिकायत नहीं जाया करते थे तो करोली साथ में लेके जाते थे। ऐसे नीचे लिखे हुए जो है वो कुछ इसके अंदर मुजक्कर अलग अलग करने, मुजक्कर जो है जैसे कुम्हार है तो मुजक्कर है, यानी इसी तरह से मटका है ये भी, इसी तरह से मोती है, करोली है, अंडा है, ये सब मुजक्कर है। मुनास और जो मुअन्नस है इसमें किताब है, जैसे किताब रखी थी, किताब रखा था थोड़ी बोलेंगे अंडा मैंने खाया इस तरह से, तो आपको इसमें मुजक्कर जो है वो लेने हैं। अब इसमें कुछ एक काम है, जैसे मनसबदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है, मनसबदार जिसके माने ओहदेदार के, इस तरह लफ्जों के आगे दार लगाकर पांच नए अल्फाज बनाइए। इसी तरह जैसे खुश मजाक, खुश और मजाक मिलकर बनाए जिसके माने अच्छा ज़ौक रखने वाला, ये सिफत है। इस तरह खुश के साथ दिल, मिजाज, अब जैसे खुश दिल है तो खुश दिल, खुश मिजाज, खुश रंग, खुश बख्त, ये आपने सिफत मिला दी इसके अंदर। सिफत कहते हैं किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना, दोनों चीजें होती हैं उसको सिफत कहा जाता है। सिफत के माने होते हैं अच्छाई या बुराई को बयान करना। तो इसमें आप जैसे खुश दिल, खुश मिजाज, खुश रंग, खुश बख्त, ये हमने मिलाकर इनके सिफत बनाए हैं। अब इसमें आपने ये सारा इस वाक्य को पढ़ा, इस सबक को पढ़ा, तो इसमें खुजी का किरदार आपको कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय लिखिए। कैसा किरदार था, कैसा लगा आपको, तो उसके बारे में अपनी राय आपको लिखनी है। इसी तरह से कुछ मुहावरे भी इसके अंदर आए हैं, तो मुहावरे जो है वो इसमें है, जैसे जान पर आ बनना, जान का खतरे में पड़ जाना जिसके मायने मौत के घाट उतार देना, जान से मार देना, खत्म कर देना। मूर्ख की एक टांग कहावत है अपनी बात पर रहना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना, पाला ना पड़ना, मुकाबला ना होना। इस सबक में मुहावरे कहावतें इस्तेमाल हुई, आम बोल चाल में शामिल ऐसे फिक्रे जो अपने असल मायने के बजाय मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल होते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। आम बोल चाल के चंद जुमले जो अपने लफ्जी मायने से हटकर कुछ और मायने अदा करते हैं उन्हें कहावतें कहते हैं। मुहावरों की तरह कहावतों में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं होती। ऊपर दिए गए मुहावरों कहावत को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे जान पर आ बनना, तो इस पर आपको जो है अपना कोई जुमला बनाना है तो आप जुमला बनाइए। इसी तरह मूर्ख की एक टांग जो है कहावत है, कहावत जो होती है किसी कहानी पर मबनी होती है। ऐसे ही आपको इस सबक का जो है खुलासा लिखना है इस, और उसमें ये बताना है कि ये सबक में जो दो किरदार हैं, एक आज़ाद का किरदार है और एक खुजी का, तो खुजी का किरदार के बारे में आपको अपनी ज़बान में लिखना है और बताना है कि खुजी का किरदार आपको कैसा लगा, तो क्यों अच्छा लगा। कुछ एक वाक्य जो है इसके अंदर वो आप डाल सकते हैं केको जी का किरदार जो है वो इसलिए दिलचस्प किरदार है, डिंगे और शेखी मारता है, और इस तरह के लोग जो हैं वो सिवाय डिंगे और शेखी मारने को कुछ करते नहीं है। और ख़ास तौर पे वाला किस्सा जो है वो चोर वाला किस्सा जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी हिमाकत की वजह से कितना पिटाई होती है उनकी, और फिर बाद में वो अपनी कफ़त मिटाने के लिए अपनी रग अहमियत और उसको जो है ना बहादुरी को बयान करते हैं आज़ाद के साथ में। तो तरह से खुजी का किरदार के बारे में अगर आप जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको आप अपने लफ्ज़ों में अपने जुमलों में लिखिए उसको। ऐसे ही इसमें जैसे मैंने बताया था कि ना हुई खरोली, शुरू में ही जब हुआ था तो खरोली के ही सुनकर एकदम चौंक पड़ता है कोई भी बच्चा या कोई भी, खरोली क्या, तो ना हुई खरोली इसको बाद में नाम दिया गया, लेकिन उनका तकिया कलाम यही था, तकिया कलाम वही आदमी जो बार बार कहता है, तो कुछ ही तो बार बार यही कहते ना हुई खरोली, हर बात में खटमलों को मानना है ना हुई खरोली। पंडित अतनाथ सरसार ने इस नावल के ज़रिए, हालांकि कई किरदार हैं लेकिन हमने जो किस्सा निकाला था इसमें से, क्योंकि दास्तानवी अंदाज में लिखा गया है नावल जो है, तो उसमें ये खुजी का किरदार जो है वो दिलचस्प किरदार था, उसको बच्चों को वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी था, और सबसे ज़्यादा मशहूर भी है खुजी का किरदार जो है अपनी हिमाकत और डेंगू की वजह से, और इस जो ये जो नावल है उसकी जान भी है, उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है, दिलचस्प भी लगता है। तो आप भी जब भी मौका मिले लाइब्रेरी से जाके फसाना आज़ाद देखिए, और उसमें और किसी वाक़े को पढ़िए, किसी और सफ़र को पढ़िए, जैसे हमने तुर्की के सफ़र के दौरान ये सराय में जाते हैं तो कैसे वो करते हैं, और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे किरदार हर जवाल पजीर माशरा, यानी एक ऐसा माशरा जिसमें सब कुछ खत्म जवाल हो चुका है, तो उसमें किस तरह आज भी ऐसे किरदार मौजूद होते हैं, और उन्होंने अपने मुबालगा आमेज, मुबालगा कहते हैं इसी बात को बड़ा चढ़ा के बयान करना, जैसे कि वो कहते हैं ना कि खटमल इतने आ गए थे उसमें हजारों लाखों की तादाद में खटमल, तो मुबालगा हो गया भाई, हजारों लाखों की तादाद में नहीं होंगे, 20-25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो उन्होंने मुबालगा रही जो है इसके अंदर की है ताकि उसको पढ़ने में मजा आए, उसमें दिलचस्पी बढ़े, तो दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए तो खुद ही को एक नया दिलचस्प किरदार के शक्ल में उन्होंने पेश किया है। ऐसे कोई किरदार आपको नजर आए आपने अपने आसपास देखा हो तो उस किरदार को भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप खुद ही के किरदार को ही लिखें, अपने आसपास आपने कोई किरदार ऐसा देखा हो तो आपको क्यों पसंद आया, आपको कैसा है, क्या करता है, आपके साथ उसका क्या रवैया है, किस तरीके का है, तो उसको आप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आपने शेख चिल्ली की कहानियाँ पढ़ी होंगी तो शेख चिल्ली भी बोर्डिंग है, माना ख्वाबों में रहना, इस तरह की शेख चिल्ली की कहानियाँ हैं, तो ये शेख चिल्ली की एक तरह से शेख चिल्ली समझ लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना 13वीं सदी का बालिश थे, खत छोटा सा, दिखने में भी छोटा सा, और फिर ऊपर से हिमाकतें भी उसकी ऐसी, हरकतें भी ऐसी थी, तो इस तरह से आप कुछ और कहानियाँ जो है वो इस तरह के ऐसे किरदारों की, मुल्ला नसरुद्दीन है जैसे, वो भी आप पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी से जाके, और मुझे लगता है आप लाइब्रेरी जाते होंगे तो ज़रूर देखते होंगे, तो आप इस नावल के बारे में भी बखूबी और लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। मैं समझती हूँ कि ना हुई खरोली ये आपकी समझ में बखूबी आ गया होगा, और बहुत ही दिलचस्प जो है सबक है, और इसको आप आगे और पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: क्या हुआ बहू? इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है.
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें.
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर. टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें. टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती. टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की. टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं. याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान.

0: सुनो आरती जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
3: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: महावारी संबंधित कुछ गलत फहमियां हैं, कईयों कहें कि कुछ भ्रांतियां हैं, आइए उनको दूर करते और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियां और गलत फहमियां होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
2: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
1: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
2: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
1: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
2: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
1: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
2: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: वी वेलकम यू ऑल बैक टू आवर शो. जैसा कि हम स्टार्टअप चर्चा पे चर्चा कर रहे थे विद डॉक्टर दिव्या राजपूत एंड सुरभि मैम. मैम दिव्या मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज आप काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंक्यूबेट करते हैं रेगुलरली, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है इंक्यूबेटर्स को ऑफर करने चाहिए जिससे कि स्टार्टअप्स को जो है यू नो दे आर नर्चर्ड इफेक्टिवली एंड यू नो स्टेप अप टू द ग्रोथ.
1: इंक्यूबेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. हम इसको बोलते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल. ट्रिपल हेलिक्स जहाँ पे की गवर्नमेंट है, जहाँ पे की कॉर्पोरेट है और जहाँ पे की एकेडेमिया है. सो इंक्यूबेशन अक्सर आपने स्पेशली इंडिया में जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं तो इंक्यूबेटर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से शुरू हुए थे. हमारा स्टेपी जो है या अभी शारदा लॉन्च पैड जो है, ये हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हाउस्ड हैं. बिकॉज हमें ये पता है कि एकेडेमिया में टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं. हमें ये भी पता है कि एकेडेमिया में हमें अच्छे मेंटर्स मिल सकते हैं, एकेडमिक मेंटर्स. लेकिन जो हमारा पर्पस है इंक्यूबेशन करने का, वो गवर्नमेंट के साथ सॉल्व होता है या फिर कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज इंडस्ट्रीज के साथ सॉल्व होता है. सो इसलिए इंक्यूबेशन इसके यू नो कोर जंक्शन में है जहां पे ये ट्रिपल हेलिक्स को कवर करता है. सो इंक्यूबेशन में हमारे पास अर्ली स्टेज के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम यू नो कुछ लोगों को सिर्फ आइडिएशन की अपॉर्चुनिटी दे सकें. तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस कहते हैं. तो ये एक साल की हम फेलोशिप देते हैं जिसमें कि यू नो जो एंटरप्रेन्योर है वो देख सकते हैं कि भाई इज एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देम और नॉट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बने भी हैं कि नहीं. बिकॉज आप इतना ज्यादा रिसोर्स अरेंज कर लेंगे और बाय चांस आपको थोड़े टाइम बाद लगे नहीं ये तो हॉबी थी, मतलब यू नो हाँ दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अब मुझे आई हैव ग्रोन ओवर इट. तो बेटर है कि आप यू नो यू फेल फॉरवर्ड, यू फेल अर्ली, यू नो. सो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस का प्रोग्राम है. फिर हमारे पास कुछ लेवल के प्रोग्राम्स है जिनको हम बोलते हैं I2P, मतलब आइडिया टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं. हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयास प्रोग्राम है जिसमें हम उनको अप टू 10 लाख की ग्रांट फंडिंग देते हैं. इनोवेटर लेवल के हैं ये. इसके बाद जो P2M जिसको हम बोलते हैं, P2M सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू मार्केट. तो प्रोडक्ट टू मार्केट में हमारे पास इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है, हमारे पास हाइब्रिड इंक्यूबेशन है और हमारे पास फिजिकल इंक्यूबेशन है. लेकिन ये दोनों जो इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स हैं इसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. और उसके बाद जब आपने मान लीजिए मार्केट भी क्रैक कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया है और आपको लगता है कि हमने एक ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर ली और अब हम दूसरी ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं, या हमारे पास एक नंबर यू नो जितने एक लोकेशन से आ सकते थे उतने हमने कैप्चर कर लिए पूरी मार्केट, अब हम दूसरी जगह जाके उसको अपने मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो हम एक्सेलरेशन के प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं और हम फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं. हम लोग सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को. सो सबसे जो जरूरी एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप पे ताकि वो स्केल अप कर पाए, एक तो है यू नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टअप खुद बनाएंगे. दूसरा है मेंटर्स जो कि हम एज इंक्यूबेटर्स देते हैं, यू नो एक मेंटर प्लेटफॉर्म देते हैं. हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट एक मेंटर इन रेजिडेंस भी है जो हमेशा यू नो स्टार्टअप्स के लिए हाफ अ डे टाइप्स ही इज ऑलवेज अवेलेबल. सो समबडी हुज यू नो बीन एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, ही इज आर JSS एलुमनाई ओनली, हमारे स्टेप के एलुमनाई हैं एंड ही रन्स हिज मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी. सो ही इज द वन हु इज ऑलवेज अवेलेबल टू स्टार्टअप्स. और यू नो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं who bring that domain value also. Because technology इतनी जल्दी जल्दी grow कर रही है, so you know for any one person to keep pace with every development in technology is not possible. So the expert, you know, experts that we have, domain experts, as well as एक मैंने बहुत अच्छा जो example देखा है हमारे JSS step में वो है जहाँ पे entrepreneurs ही entrepreneurs को support करते हैं. So हमारा जो entrepreneur network है, इवन हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, दैट इज अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी. सो एंटरप्रेन्योर्स की आपस में क्रॉस लर्निंग बहुत स्ट्रांग है बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. तो या सो वो क्रॉस लर्निंग के हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं. सो मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन कैन बी वाइड, इट कैन बी यू नो ह्यूज, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है, इसके अलावा यू नो एग्जीबिशंस की अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं, हमारे साथ एग्जीबिशन लगाने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं. सो मार्केट एक्सेस के लिए जो पॉसिबिलिटी हो वो देते हैं, लेकिन आई थिंक जो कोर पे जरूरी है वो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो अर्ली स्टेज के, मतलब एंटरप्रेन्योर मैं बन भी सकती हूँ कि नहीं, एक तो ये लेवल, दूसरा फिर आई टू पी, आइडिया टू अ प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट टू मार्केट, और फिर एक्सेलरेशन. सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग रन करते हैं, एंड वी इवन हैव अ प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट इनोवेशन. अगर कॉर्पोरेट कभी सीखना चाहे कि ये इनोवेशन क्या चीज है, तो यू नो वी ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स फॉर दैट.
0: दैट्स अमेजिंग. सुरभि मैम, आपका स्टार्टअप भी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो इनक्यूबेट होने से आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा हुआ है? यू नो वॉट kind of gain you've gained out of the incubation center?
2: Yeah, so I'll be honest here. I discovered what is incubation bahut der se. Mera idea product tak pahunch gaya tha. By then I was doing a part time work because I needed money to fund my startup. And then when it was in the market, जब हमने लॉन्च कर दिया था bakehoney.com platform, we had some 15-20 bakers who were baking on the for customer demands. That's when I wanted an office space. तो मैं ढूंढ रही थी, तब मैंने पढ़ा कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंक्यूबेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग इंक्यूबेशन फॉर एवरी लेवल ऑफ स्टार्टअप्स लाइक दिव्या मैम जस्ट एक्सप्लेन. सो दैट्स व्हेन आई केम टू नो व्हाट इज इंक्यूबेशन. एंड लकीली आई वाज इन नोएडा एंड आई हैपन टू बी एट जेएसएस, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू दैट अ स्टार्टअप गेट्स बाय बीइंग इंक्यूबेटेड. ऑफकोर्स द मेन थिंग दैट आई लर्नड और दैट आई गेन्ड फ्रॉम देयर वॉज अ नेटवर्क. Right? Like she said, there is a network of other startups also. And हर कोई आपका product नहीं बना रहा है, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो करना. And it is so easy to learn from someone else who's sailing in the same boat. And even on the cost, it is effective because someone else has already gone through the journey of learning. तो अगर मुझे even if I have to hire a vendor for something, मैं किसी आसपास वाले startup से बात कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई vendor चाहिए, दे टेल मी कि अच्छा मैंने ये 3-4 से ट्राई किया, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज द बेस्ट इन क्वालिटी. सो आपकी वो लर्निंग इजी हो जाती है, आपकी वो जर्नी इजी हो जाती है, एंड आपका टाइम बहुत बचता है फ्रॉम दैट नेटवर्क. वन, टू, मेंटर्स हेल्प अ लॉट. हमें लगता है कि सी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट आई ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं संभाल लूंगी, बट ओनली व्हेन यू जंप इनटू द पूल यू रियलाइज कि स्विमिंग कैन नॉट बी डन. यस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपको कूदना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा. एंड देन यू नीड अ पंचिंग बैग. यू नो फाउंडर्स कई बार हम लोग अपने अपने में ही ट्राई करते रहते हैं कि यार ये कर देंगे बहुत अच्छा बन जाएगा, ये कर देंगे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट बिकॉज हम अपने साइलो में काम कर रहे हैं. यू नीड टू गेट आउट एंड टॉक टू पीपल, गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू मेंटर्स से बेटर नहीं बता सकता कोई और, क्योंकि दे हैव सीन सो मेनी अदर स्टार्टअप्स लाइक योर्स, अनलाइक योर्स, एंड दे हैव गेन्ड दैट एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी स्टार्टअप्स विद नो वन पर्सन कैन डू इन अ लाइफ टाइम. So it's always better to have a second point of view or a third point of view, because when you are in an incubator, आपको एक दो नहीं कई लोग मिल जाते हैं जिनसे आप brainstorming कर लेते हो, जिनसे आप नई चीजें सीखते हो कि अच्छा ये technology नहीं, there is a better technology that you can employ. I have read about it, or why don't you attend this session which is talking about this technology? And you gain so much out of it that you don't even realize that you have gained so much of skill. It's such a passive learning. But when it gets applied, you realize कि अच्छा ये तो मैंने यहीं से ही सीखा है, मेरा पुराना experience है जरूरी, but जो incubator से experience आता है there is no match to it. And of course when you go for funding, all of that experience helps you a lot.
0: मैम थोड़ा सा आप अपने startup के बारे में briefing दीजिए, although that should have been happened in the beginning, you know, I should have asked you, but thoda sa ma'am, startup hamare listeners ke liye, so that sure. they'll know exactly what you're doing.
2: Sure. So, bekhani.com is an aggregator platform. Aggregator platform kya karta hai? अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आपके सामने लाता है. हाउ बेकनी इज डिफरेंट इज हम लोग खाली बेकरी को केटर करते हैं एंड टुडे देर आर सो मेनी वुमेन होम बेकर्स एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनली. हम एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं और कैसे सपोर्ट करते हैं कि देर आर कस्टमर्स ऑन वन साइड हु वॉन्ट हेल्दी होम मेड प्रोडक्ट्स. On the other side, there are people who are making these healthy homemade products, but they don't, both of them cannot talk to each other. Because wo homebaker shayad aap hi ke area mein ho. Aapko pata hi nahi hai. Because wo homebaker ki ek limited bandwidth hai. Wo keval baking pe focus kar rahe hain. Wo apne products ko achha banane pe focus kar rahe hain, lekin use market nahi kar sakte hain. So we give them a platform on one side. On the other side, customers have amazing requirements. Because today, with internet, with the globalization, हमें सब पता है कि यू नो किस तरह के डिजाइन ट्रेंडिंग है इन द वेस्ट. बेकिंग हैज कम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट, सो वी आर ऑल एक्सपोज टू द न्यू ट्रेंड्स इन बेकिंग, बट वी डोंट नो हु कैन मेक दैट फॉर अस. सो वी गिव दैट प्लेटफॉर्म टू द कस्टमर्स कि आप यहां पर नए लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट इंग्रीडियंट्स, लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, बींग डिजाइंड एंड बींग मेड बाय एक्सपर्ट होम बेकर्स एंड you can get them customized to your requirement. Mm-hmm. So that's the platform bekhani.com. Currently we are operational across NCR in all the regions of NCR and in parts of Bangalore.
0: Ma'am, break mein jaane se pehle Divya ma'am ek question aapse poochungi. Startup is not just about founder, it is about the team as well. Puri team hai, but ek vision hai wo founder ka hota hai. To ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एक फाउंडर को जिससे वो अपना विजन, वो इनोवेशन की कल्चर जो है वो अपनी टीम में भी बिल्ड कर पाए टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप.
1: आई थिंक सबसे पहला जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मंडे मॉर्निंग मीटिंग,
0: द कल्चर.
1: यस. सो यू नो सी आई थिंक स्टार्टअप्स आर नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट. स्टार्टअप्स आर मोर मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस. अब आपका फाउंडर का वो मिशन है, लेकिन वो फाउंडर का मिशन आपकी टीम में कैसे जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग उनके साथ करनी होगी. आपको उनके साथ नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने होंगे. सो यू नो बिकॉज सिर्फ आपके कहने से प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते. आपकी टीम अगर आपके साथ है जिनकी डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्टीज है, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स कुछ क्रिएट हो सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि रादर मैं कहूंगी कि कभी कभी ये थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है. बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि हमारी टीम्स यू नो बिजनेस क्रैक नहीं कर पा रही हैं, सेल्स क्रैक नहीं कर पा रही हैं. तो उस केस में हमने ये भी देखा कि कभी कभी हो सकता है कि वो सही यू नो रिक्रूटमेंट ना हो. जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, जैसे कहीं भी होता है, एकेडमिक्स में होता है, कैन बी यू नो मे बी पीपल नॉट फिट फॉर दैट रोल, राइट. तो एक तो सही हायरिंग में फिर बहुत जरूरी है कि यू नो इफ द स्टार्टअप्स कैन क्रिएट एन ईसॉप पूल, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ताकि एम्प्लॉयज को भी लगे कि अगर कल को कंपनी ये बड़ी हुई तो मेरा इसमें ओनरशिप है, तो वो ओनरशिप दे पाना. और अक्सर यू नो एंटरप्रेन्योर्स बिकम द बिगेस्ट बॉटलनेक आल्सो, बिकॉज हम डेलीगेट नहीं कर पाते. हमें हर चीज अपने तरह चाहिए बिकॉज हम परफेक्ट हैं. हमें लगता है हमारा काम परफेक्ट है तो हम ही एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, सो यू नो फाउंडर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड नॉट बिकमिंग अ बॉटलनेक. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप कर लेते, पर कुछ तो हो जाएगा, आपके पास आके नहीं तो रुक जाएगा. So, you know, the more people will start delegating power, delegating work, delegating responsibility, okay? And as well as giving ownership to their employees, at least core team. So, you know, every founder should create an inner circle for themselves. There has to be, you know, at least 5 people in your inner circle, including an advisor, maybe an incubator head, maybe somebody. Wo 5 log jin pe aap aankh band karke believe karte hain, right? Create your inner circle. That's one tip. Two, start delegating responsibility. आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते. Third, जो आप products market में उतार रहे हैं उनको co-create कीजिए अपनी teams के साथ. ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, जाइए ना एक रिट्रीट करके आइए, ऋषिकेश चले जाइए, ठीक है, नैनीताल चले जाइए, एक रिट्रीट करके आइए, ठीक है. सो यू नो, अपनी टीम को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने साथ ग्रो करने की. बिकॉज आपने सही कहा वानी कि स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट द फाउंडर, राइट. बिकॉज फिर तो हीरोज बनते हैं ना सिर्फ,
3: एग्जैक्टली
1: जहाँ, एग्जैक्टली हाँ. सो यू नो, स्टार्टअप तो वहां बनता है जहाँ टीम साथ में चलती है. सो माई सजेशन टू ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स इज क्रिएट योर इनर सर्कल. आपके वो 5-7 लोग जो यू नो आंख बंद करके हर समय आपके साथ खड़े हैं, और उनको फिर गिव देम अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, गिव देम ओनरशिप, मेक देम को फाउंडर्स. एंड बिकॉज हमने हमारे अभी यू नो दो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी फंड रेज किया है. तो एक स्टार्टअप ने 30 करोड़ रेज किया सन फार्मा से, एक और स्टार्टअप ने 40 करोड़ में वो कंपनी इनफैक्ट अक्वायर और हायर डील हुई है. तो सेम यू नो बैलेंस टीम, बहुत बैलेंस टीम है उनकी जो कोर टीम है, और यू नो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है. सो एंड यू नो दे वर फुली इन्वेस्टेड इन टू वट दे वर डूइंग. सो वंस दैट हैपन्स, आपकी टीम का भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा. उनको पता है कि ऐसा नहीं कि यू नो आप खुद तो कहीं पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो और साथ में उनको काम पे लगाया और उनको कहा है कि स्टार्टअप है तो सैलरी कम मिलेगी. ऐसे नहीं होता, ठीक है. उनका एक फेथ होना चाहिए आप पे. तो वो फाउंडर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो परकुलेट दैट मिशन इन द टीम इटसेल्फ.
0: That's amazing. That's a great advice, ma'am. I think इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद.

0: तो हम मैं वापस आपका स्वागत करती हूँ सुनो शारदा के स्टार्टअप चर्चा शो में. और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे साथ है मैम दिव्या राजपूत एंड मैम सुरभि. सुरभि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कैसे ये आइडिया आया स्टार्टअप का, यू नो, इन बेकरी एंड ऑल दैट? कैसे आपको ये स्टार्टअप का आइडिया आया, प्लस इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस?
1: सो आइडिया कैसे आया, इट्स लॉन्ग स्टोरी, आई जस्ट कट इट शॉर्ट. सो इट वॉज माई सन्स बर्थडे, ओके, एंड वी हैड जस्ट शिफ्टेड, हम लोग दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए थे, एंड विद इन अ मंथ बर्थडे पड़ा, एंड हमने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं. सो वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग वेरी वेल, ओके, इट वॉज अ न्यू हाउस, सब गेस्ट्स भी आए थे, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस वार्मिंग एंड हिज बर्थडे, सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. अब बच्चों का जैसे होता है, ही वॉज 4 years एट दैट टाइम, सो ही हैड अ थीम इन माइंड कि मुझे टाइगर चाहिए केक में. एंड एट दैट टाइम हम ढूंढते रहे, वी डिडंट नो अ गुड बेकर अराउंड, एंड वी वॉन्टेड अ गुड थीम, सब कुछ परफेक्ट था एक्सेप्ट फॉर द केक. एंड दैट्स व्हेन वी फेल्ट यार, आई मीन आई नो देर आर पीपल हु कैन मेक सो गुड केक्स, बट आई डोंट नो हाउ टू रीच देम. And that's when we started working in the hindsight on this idea. But gradually, tab I was also in my job. मतलब वो आई चीज और चली गई. Then gradually we realized it once again. We felt कि यार I want a you know sugar free bread for my mom. Sugar free cake for my mother. She's a diabetic. And so on. So there were so many incidents which made me feel कि इसकी requirement जो मुझे पड़ रही है, I'm sure there are many others who need this.
0: Exactly.
1: And then I came to know about home bakers and people who are actually making this. तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? That's when I felt ki we need to build this as a platform. Humne pehle shuru mein khali content shuru kiya ki kya sahi hai, kya galat hai. And as a mother, I felt ki ingredients are important for my children. So we started writing about all of that. We were a small team of 3-4 people. Hum log bas likhte the. And fir hume bakers ne khud approach kiya. We did a small event, bakers aaye, and we realized ki there are so many of them. Only in Noida ki jo log इस तरह की बेकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, हु आर कॉन्शियस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हु आर कॉन्शियस ऑफ डिजाइंस, एंड हु फील फॉर योर प्रोडक्ट्स, एंड नॉट जस्ट केक्स. आप जो डेली बिस्किट्स खा रहे हैं, वी डोंट रियलाइज उसमें कितने केमिकल्स जा रहे हैं, हाउ अनहेल्दी इट इज, इवन इफ इट इज सेट टू बी यू नो हाई फाइबर और लो शुगर, इट इज स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स. सो देर इज अ लॉट वी कैन डू अबाउट चेंजिंग आर ईटिंग हैबिट, इम्प्रूविंग दैम विद ओनली सोर्सिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस. सो दैट्स वेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग टूगेदर दीज बेकर्स एंड मेकिंग इट इन टू अ प्लेटफॉर्म विच इज बेनिफिशियल ऑन बोथ द साइड. दीज बेकर्स गेट देयर बिजनेस, दे आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड एज अ कस्टमर आई नीड देम, एंड दैट्स वेन वी मेड दिस प्लेटफॉर्म. नाउ अबाउट इनोवेशन.

0: ऑफ कोर्स इनोवेशन इज नीडेड एट एवरी स्टेप. अगर आप वो कर रहे हो जो कोई और कर रहा है, तो आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को ज्यादा एक पॉइंट के बियॉन्ड सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो एक सेम ही तरीके से आप अटैक कर रहे हो ना उसको. सो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरह से आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू वाटर, वेदर इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर पिक्चर, वेदर इट इज रिलेटेड टू यू नो एनवायरमेंट, इनोवेशन इज नीडेड. एंड इनोवेशन डजंट नीड टू बी हाई टेक, यू नो, इनोवेशन कैन बी एज स्मॉल एज रिप्लेसिंग अ प्लास्टिक विद अ जूट बैग. You know, so it's a small innovation, but it is an innovation in itself because you're breaking the barrier.
1: I've read it somewhere that, you know, serious innovation is greater than invention.
0: Right. Maybe. You don't need invention.
1: We don't need invention. Divya ma'am, my last question is for you. Aapke hisab se ma'am, jo bhi women entrepreneur hain, jo विमेन है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनको क्या वो पीस ऑफ एडवाइस होगी जिससे वो जो सोसाइटल चैलेंजेस फील करते हैं वो चैलेंजेस को वो कवर अप कर पाएं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएं?
2: मेरा सबसे जो आई थिंक शुरू का सजेशन होगा वो ये रहेगा कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए, ठीक है, फॉर विमेन. विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And like Surbhi said थोड़ी देर पहले कि you know why just entrepreneurs, हर women के लिए ये ज़रूरी है, पर women entrepreneurship में इसलिए भी ज़रूरी है because अब आप you know सिर्फ एक business owner नहीं है, अब आप एक leader भी बनने जा रही हैं. So जब आप leader बनने जा रही हैं तो आपके लिए आपका family support system important है, but otherwise आपका business support system भी बहुत important है. सो एक आप अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए. जो मैंने बोला किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है एक आपका इनर सर्कल, ठीक है, वो लोग जो आपके लिए अवेलेबल हैं. किसी तरह का यू नो आपको किसी मीटिंग में अचानक जाना पड़ेगा, ठीक है, और वाइल मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अचानक जाना पड़ेगा तो घर में कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. तो सबसे पहले आपके दिनचर्या को स्टडी कीजिए, देखिए आपको आपकी अगर आपके बिना वो चीज चले, चाहे फिर वो आपका घर हो चाहे आपका बिजनेस हो, आपके बिना अगर वो जगह चले तो उसके लिए कौन चाहिए? आपका रेप्लिका चाहिए या यू नो कोई लो स्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा? तो सबसे पहले अपने रिसोर्स एलोकेशन करिए, फिर देखिए कि फंड्स कहाँ चाहिए, ठीक है. हम अक्सर अंडर फंडिंग की वजह से हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे तुम तो कितने टाइम से स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हो. सो वो शायद यू नो बहुत ज़रूरी नहीं है करना, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपने प्री प्लान कर लिया तो पहले अगर हो सके तो एंटरप्रेन्योर जैसे ही आप बनने की सोचें तो 6 महीने प्लानिंग कीजिए, आपकी रिसोर्स प्लानिंग कीजिए, फंडिंग के रिलेटेड, मैन पावर के रिलेटेड. अगर आपको आपके माइनस वो जगह चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ठीक है, वो सोचिए, एक्सपर्ट्स अरेंज कीजिए. आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप कीजिए और एक आपका इनर सर्कल क्रिएट कीजिए. सो मेरा ये सजेशन रहेगा, 6 months ऑफ गुड प्लानिंग कैन एक्चुअली सेव ईयर्स फॉर यू. सो वो एक मेरा सजेशन रहेगा टू ऑल वेमेन एंटरप्रेन्योर्स. और फिर जब एक बार आपने रिसोर्सेस अरेंज कर लिए तो उसमें 100% कूद जाइए. आप उसको 2 से 3 साल देखे देखिए, आपको मजा आ जाएगा. सो मेरा बस ये सजेशन रहेगा हमारी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए.
3: Surbhi मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वेमेन स्टार्टअप फाउंडर, फॉर ऑल द वेमेन स्टार्टअप फाउंडर्स आउट देयर.
0: सी इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ टफ जर्नी, एंड जो चीज टफ नहीं है उसमें मजा क्या है. सो face it, if you have decided, it is a roller coaster ride, but maza aayega. And ultimately what you want is something that you should be clear on. Aapke dimag mein clear hona chahiye, mera ultimate gain kya hai, mera ultimate goal kya hai, mujhe kitne time mein kya achieve karna hai. Set your goal right, and like Divya ma'am said, keep your support system ready so that you can juggle between so many things, because juggling is important for you. To be a founder, be it a man or a woman, you have to juggle with so many things. And women have to do it more. So be ready for that juggle, be ready for the roller coaster ride. It is rewarding at the end, but you have to be patient and you have to be having your perseverance on. So wo ab jab tak patiently धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एंड अपना गोल सही रखें, गोल सेट रखें, तो देर इज नो लुकिंग बैक.
3: वी से दैट ड्रीम्स विच आर नॉट यू नो विच डोंट स्केयर यू आर बिग इनफ
0: राइट
3: सो यू नीड टू गेट लिटिल बिट स्केयर्ड एंड देन डर के आगे जीते लाइक वी ऑल से. सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस स्टार्टअप चर्चा. आई विश टू थैंक दिव्या मैम एंड सुरभि मैम फॉर कमिंग हेयर एंड यू नो शेयरिंग देयर इनसाइट्स एंड थॉट्स एंड देयर जर्नी विद अस. और आई एम श्योर हमारे जो श्रोता हैं और जो भी हमारा शो देखेंगे उन्हें एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, स्पेशली टू द वुमेन जो कि एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं. उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी, वर्ड ऑफ थॉट्स होंगे एंड they can move ahead successfully. Thank you so much.
4: अभी आप सुन रहे थे विमेंस एंटरप्रेन्योर्स थीम पर आधारित ये स्टार्टअप चर्चा. इस चर्चा में शामिल थी डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS. दूसरी हमारी गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच. और तीसरी मेहमान रही मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ विमेंस बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. और इस प्रोग्राम को संचालित कर रही थी या यू कहें कि मॉडरेटर थी मिस वाणी कपूर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से. आशा करता हूँ कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, निश्चित तौर पर खासकर उन महिलाओं को जो इस क्षेत्र में आकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं. और फिर कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है. तो ये परिचर्चा आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं. ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

ब्यूटीफुल ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसिरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: चिलूंगी पो।
1: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: गगन कोकरी फतेह।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
6: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
5: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
6: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
7: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको पता है, गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है,
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, किस तरीके से, तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, कैसे, तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है, ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: नील डिमेलो, डू यू टेक कैरल वास एज योर लॉफुली वेडेड वाइफ?
2: आई डू।

0: take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
1: I do.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
1: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
1: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
1: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तो जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Solo Sharda.
5: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: है बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट

0: कलाकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
5: हाँ जी मैडम, किधर चलना है?
6: चले हम शहर घूमने।
5: चलो फिर।
7: आंखें तेरी खातिल कुड़िये उत्तर चश्मा लाया आई।

0: 아니 말은 마야마사 야얼굽네
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM, इंकलाबी

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरु ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम, जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओकेरा के तुरंत साफ करेनी, जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम,
3: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
8: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
8: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सफाई ही आधा ईमान है, यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं। कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, शौचालय के प्रयोग के बाद, बच्चों के मल को साफ करने के बाद, बाहर से आने के बाद, पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद, खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं। हमारा भविष्य हाथों में है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Filmmaking एक creative field है।

0: और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.